सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि।

पाराशर। साथियों इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियाँ और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक बांसुरी मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर। दोस्तों इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप जानेंगे साथियों हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए, जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 से 1 तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नो राम राम। किसान भाई बुन आप हम रेडियो हो आप सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सबनों घणे मान स्वागत करो हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारा टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज अमारी अब तक की बातचीत नो विषय है कि आपणे खेती ते की जुड़ी जूनी जे परंपराएं है ने एना नी अवड़ी ने टाइम में हूँ उपयोगिता थी सके जाणंगा अणा विषय माते घणा कनी वाता ने पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहला आपने हमरावी दा गीत मोरे करा आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: બાઈનબોનું ગીત તો આઈશું પૂરું અને ગીત વાત એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે ખેતી તકી જુડી જૂની પરંપરાએ કઈ કઈ હે ને અવળેના ટાઈમે એણની હું ઉપયોગીતા હે તો અણો વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જુડી રહે સોહનજી તો સબ તકી પહેલા આપણે હામરી લણની વાત ને મોરે કર આપણી વાત સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ और खेती से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं तो सर आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ कृषि से जुड़ी पुरानी परंपराएं कौन कौन सी थी और उनकी अभी के समय में क्या उपयोगिता है तो सर सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि हमारी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और पुराने रीति रिवाजों में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी किसानों के लिए उपयोगी हैं
1: देखिए हमारी जो कृषि पद्धति है वो पारंपरिक ही है पूरी की पूरी ठीक है धीरे धीरे धीरे धीरे वैज्ञानिक उन पे प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे उसमें बदलाव करते गए ज्यादा उत्पादन के उसमें या बीजों का अनुवांशिक गुणों को एक बीज के गुण को दूसरे बीज के गुण में इस तरह से जो है उसमें परिवर्तन हो करते गए और इस तरह से हमारी कृषि पद्धति में धीरे धीरे मशीनीकरण आया धीरे धीरे तो मशीनीकरण के हिसाब से फिर उस कृषि पद्धति में बदलाव हुआ तो जैसे जैसे साधन बढ़े या जैसे जैसे ये कहूं कि मशीनीकरण और वैज्ञानिकरण आया धीरे धीरे कृषि पद्धति में जो बदलाव आए
0: बिल्कुल
1: जबकि परंपरागत जो कृषि पद्धति है वो ही वास्तविक कृषि पद्धति है वो एक साहित्य है और वो धीरे धीरे एक दिन में जैसे कि कृषि है वो नहीं सीखी गई आप सभी को पता है कि हमारे जो पूर्वज है जंगलों में रहा करते थे
0: बिल्कुल
1: और जंगलों में रह के जंगल में जो मिलता था वो खाते रहे धीरे धीरे फिर भोजन की कमी आई भोजन की कमी आई तो फिर उन्होंने उसका हल निकालने के लिए इस कृषि को सीखा और बुआई करना चालू किया कुछ जंगल थोड़ा साफ करके बुआई चालू किया वहीं अपने घर के पास में ही एक खेत बनाया फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी एक खेत से दो खेत बने दो खेत से पांच खेत बने फिर गांव बना फिर शहर बने तो इस तरह से बढ़ता गया कारवा
0: बिल्कुल
1: तो यही जो है हमारी परंपरागत कृषि पद्धति धीरे धीरे विकसित होती गई और इसके साथ में एक फसल से दो फसल से तीन फसल हम क्या खा सकते हैं उसी को उगाने लगे और खा के टेस्ट करते हमारे पूर्वज और उससे अगर कोई शरीर को नुकसान नहीं होता और पेट में जो है ऊर्जा मिलती शरीर में ऊर्जा मिलती बस वही उगाना शुरू किया और वही हमारी कृषि पद्धति का पार्ट है वो बन गया इसी तरह पेड़ पौधे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहे हैं या जिनके फल हम खा रहे हैं वो हमारी कृषि पद्धति का जो है हिस्सा बन गए और इस तरह से जो हमारी कृषि पद्धति विकसित हुई
0: जी हाँ सर आपने सही कहा जैसा कि आपने बताया कि हमारी कृषि पद्धति क्या है किस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी है यही सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आधुनिक कृषि तकनीकों के इस दौर में पारंपरिक कृषि ज्ञान और परंपराओं को अपनाने से किसानों को क्या लाभ मिल सकता है
1: देखिए आधुनिक कृषि पद्धति को हम देखते हैं तो वो बहुत खर्चीली हो गई है
0: बिल्कुल
1: हर चीज में पैसे का लेन देन है जबकि हमारी परंपरागत कृषि पद्धति में पैसों का लेन देन कहीं नहीं था
0: बिल्कुल
1: एक सामाजिक व्यवस्था थी या पारिवारिक व्यवस्था थी जो पूरी खेती को करते थे या जरूरत पड़ती थी तो दूसरे लोग उसमें मदद करते थे जब उनको जरूरत होती तब वो उनके खेत पे जाके मदद कर देते

0: और जब इनको जरूरत होती तब इनके खेत पे आके मदद कर देते, या बीज कभी बाजार से नहीं लाना पड़ता था, बीज खुद ही संरक्षित करके रखते थे।
1: जी जी।
0: और जैसे कि आज मशीनरी में हल चलाना है तो ट्रैक्टर भाड़े लाना पड़ेगा, ट्रैक्टर भाड़े लाएंगे तो वो ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल खाएगा, है ना, डीजल खाएगा तो वो जो है पोल्यूशन भी फैलाएगा और वातावरण में प्रभाव भी उसका गलत असर भी पड़ेगा।
1: जी जी।
0: चाहे हमारी श्वसन क्रिया में हो, चाहे हमारे शरीर में बीमारियों में हो, तो प्रदूषण तो जो है हमेशा नकारात्मक ही परिणाम देता मानव शरीर के लिए। तो वो धीरे धीरे जो है देसी खाद हमारे यहाँ पे जो गाय भैंस इतनी पर्याप्त मात्रा में किसान रखता था और इतनी जमीन भी उसके पास हुआ करती थी, अब धीरे धीरे धीरे किसानों के पास जमीन कम होने लगी तो किसानों के पास पर्याप्त चराने के लिए जो है खेत नहीं है या बाड़े नहीं है या चारागाह नहीं है, इसलिए किसानों ने धीरे धीरे पशु कम कर दिए। पशु कम कर दिए तो जो देसी खाद जितनी मात्रा में गोबर खाद मिलना चाहिए उतनी मात्रा में
1: नहीं
0: मिल पाता।
1: बिल्कुल।
0: तो किसान है वो रासायनिक खाद की तरफ गया, रासायनिक खाद की तरफ गया तो रासायनिक खाद है उसने भूमि पे थोड़े दिन तो अच्छा उसने उत्पादन दिया, अब भूमि पर नकारात्मक असर डालने लगा। एक भूमि में जो नमी कायम रहती थी वो नमी गायब कर दी और जो जमीन है या मिट्टी है वो बहुत कठोर हो गई, उसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई।
1: जी जी।
0: अब धीरे धीरे धीरे पानी की जरूरत ज्यादा होने लगी, है ना, और खाद की जो जरूरत है दिन प्रतिदिन जो है वो रासायनिक खाद है तो वो तो क्या करेगा, जितना भी आपके मिट्टी में जो तत्व है उसको खींच के एक साथ दे देगा, नया तत्व उसके अंदर मिलाएगा नहीं।
1: बिल्कुल।
0: है ना। और हमारा जो जैविक तरीका था वो पूरा एक साइकिल चलती थी, पूरी साइकिल कंप्लीट करता था तो वो एक जैसा जो है हमारी मिट्टी रहती थी, एक जैसा उत्पादन रहता था, एक जैसी जमीन रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अब वैसा नहीं है, अब हर साल है उसमें परिवर्तन आ रहा है।
1: जी जी।
0: या तो रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है या जो है उसमें हर साल सिंचाई की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, इससे अलग अलग बीमारियां आ रही है, तो इससे क्या है कि खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है और उत्पादन धीरे धीरे हम देखेंगे
1: कम होता जा रहा है।
0: तो धीरे धीरे धीरे अब किसान परिवार क्या है कि खेती छोड़ता जा रहा है। खेती छोड़ने का मुख्य कारण ही यही है कि उत्पादन कम है, खर्चा ज्यादा है, युवा खेती को इसलिए पसंद नहीं करते, इसलिए युवा दौड़ते हैं और वो नौकरी की चाह में, और नौकरी की चाह में जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका पूरी जवानी है वो नौकरी पाने की चाह में खत्म हो जाती है और आखिर में जाके वो बेरोजगार हो रह जाता है।
1: जी,
0: तो न खेती सीख पाता है, न खेती पूरी तरह से कर पाता है, न नौकरी मिल पाती है।
1: जी हाँ सर, आपने सही कहा। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुराने समय में किसान मौसम और प्राकृतिक संकेतों के आधार पर खेती के निर्णय कैसे लेते थे और क्या यह ज्ञान आज भी उपयोगी है?
0: बिल्कुल। जैसे कि हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो पहले नक्तर हुआ करते थे।
1: बिल्कुल।
0: ये नक्तर आ रहा है, ये नक्तर आ रहा है, उस नक्तर का काफी जो है वो भविष्यवाणियां बहुत ही सही साबित होती थी। जैसे कि आकाती जो आती है हमारे यहाँ पे, तो वहां से जैसे कि हम कहते हैं कि जो खरीफ जो ऋतु है वहां से शुरू हो जाती है और वहां से बुवाई शुरुआत हो जाती है और उस समय लगभग जो है बारिश जो है आना शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ लंबे समय वाली जो फसलें हैं वो आकातीज में लोग लगा दिया करते थे, जैसे कपास है, हल्दी है, इस तरह की जो लंबे समय अवधि वाली जो फसलें हैं उनको उस समय लगा दिया करते थे। जब थोड़ी बहुत पानी की कमी आती थी तो सिंचाई बीच में कर दिया करते थे, बाकी इतने में बारिश आ जाती, वैसे लगभग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पौधा छोटा होता, पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। और जो जैसे कि बहुत सारे हवा चलती है इस तरफ से, पूर्व ही चल रही है तो ये इतने दिनों में मानसून आ जाएगा, तो ये काफी परंपरागत है और ये सिद्ध परंपराएं जो है और अभी भी जो पुराने लोग हैं वो उसको मानते हैं, उसके आधार पे खेती भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा शास्त्र भी है तो शास्त्र में ये सारा वर्णित है।
1: बिल्कुल।
0: सारी चीजें, तो हमको उस ओर थोड़ा पुराना जो हमारा ज्ञान है हम उसको कूरे देंगे। तो जो ये वैज्ञानिक जो धारणाएं हैं, वैज्ञानिक जो संदेश जो देते रहते समय समय पे, ये भी उसी के आधार पे है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा इनकी जो पोजीशन के आधार पे जो है हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, और अभी भी जो है उसी के आधार पे ही जो सैटेलाइट है वो वहां से ये सारी चीजें आती है।
1: बिल्कुल सर, यही अब मेरा आपसे सवाल है कि बीज संरक्षण, जैविक खाद और पारंपरिक खेती के तरीकों से किसानों को क्या लाभ मिलते हैं?
0: देखिए, जैविक खाद और देसी बीज, तो सीधा सा हम बात करें तो देसी मतलब हमारा, जैविक मतलब हमको बिना खर्चे का हमारे खुद के संसाधनों से बना हुआ खाद, और हमारे आसपास की जो जंगली जड़ी बूटियां या पत्ते उनसे बना हुआ जो दवाई है वो जैविक दवाई। इन सब का उपयोग करने से नंबर एक बात तो कि पौधों पे उसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। नंबर दूसरी बात है कि जो जमीन है वो हमारी दूषित नहीं होती है, वो सही रहती है, और जो जमीन है वो सजीव बनती है। सजीव का मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे जीवाणु हैं जो जमीन को उर्वरक बनाने के लिए जमीन के अंदर काम करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वो जीवाणु ऐसे रहते हैं जो वातावरण से जो भी तत्व चाहिए वो वातावरण से लेते हैं और जमीन में फिक्स करते हैं और जमीन को उर्वरक बनाते हैं, और वो जमीन को निरंतर सजीव रखने की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। लेकिन अभी अगर हम रासायनिक की बात करें तो वो उस साइकिल को या उस परंपरा को तोड़ देता है। क्योंकि उनमें पुनः जो है जो भी जीवाणु है जो साइकिल बनी हुई है वो वापिस से उनका जीवन शुरुआत करते हैं, वो उनकी उम्र पूरी होती है, मरते हैं, अंडे वापिस पुनः बच्चे बनते हैं, फिर वयस्क होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर उन्हीं के बच्चे वापिस होते हैं। ये साइकिल निरंतर है, चलती रहती। लेकिन अगर हम यही चीज अगर रसायन में जाए तो रसायन में ऐसा संभव नहीं है, है ना। इसी तरह हम अगर देसी बीज की बात करते हैं तो देसी बीज में क्या है कि परंपरागत जो है वो अनुवांशिक गुण उस बीज में रहते हैं, वो बीज उसी में चलता रहता है। क्योंकि देसी बीज है वो निरंतर आपका बीज बनता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फल बनता है, फल से वापिस बीज निकालते हैं, ठीक है, फिर वापिस वो बीज के रूप में उपयोग आता है, ये निरंतर साइकिल चलती है। लेकिन अब हम उदाहरण लेवे हाइब्रिड का, तो हाइब्रिड में आपने बुआई करी, ठीक है, लेकिन अगले साल उसकी आप वापिस बुआई नहीं कर सकते। अगर आपने बुआई कर दी तो आपका जो 50% से ज्यादा जो पौधे हैं वो बिना फल के रह जाएंगे, बिना उसके बांझ हो जाएंगे। फिर अगर अगले साल अगर आपने गलती करके फिर उसी को बुआई कर दी तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको खेत को एकदम जो है वो उस तरह से उत्पादन नहीं दे पाएगा। या एक तरह से कह सकते हैं कि हम हाइब्रिड बीज को दूसरे साल नहीं लगा सकते, जबकि देसी जो बीज है हमारा वो निरंतर जो है वो हम उसको लगा सकते हैं, निरंतर चल सकता है, वो 100 साल तक हम चला सकते हैं, 500 साल तक चला सकते हैं, 1000 साल तक चला सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड बीज को हम एक फसल से दूसरी फसल तक हम नहीं ले जा सकते। अब अगर दोनों की हम बात करते हैं जैसे कि खर्चे की, तो हाइब्रिड बीज बहुत महंगा आता है, जो देसी बीज है हमारे घर पे बिना पैसे का होता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, दोनों के उत्पादन का हम तुलना करते हैं तो हम उसमें भी अगर हमारा परंपरागत बीज है और उसमें भी हम एक तरह से उसको भी हम शुद्ध करें, शुद्धिकरण उस बीज में। शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि शुद्धिकरण में एक जैसे पौधे को हम जब फसल पकती है उस समय हम टेक कर सकते हैं। एक जैसे मान लो हम भुट्टे का एक उदाहरण देते हैं, मक्की का उदाहरण लेते हैं, तो एक समय फूल आते हैं उनको हम अलग टेक कर दे और अलग समय फूल आते हैं उनको हम छोड़ दे, है ना, उन पौधों को। अब उसमें से एक समय फूल आ गए, अब उसमें दो भुट्टे वाले और एक भुट्टा वाला वो हम अलग अलग कर दे, है ना, उसको भी हम टेक कर दे। अब भुट्टे की साइज के आधार पे भी हम उनको अलग अलग टेक कर देवे, तो इस तरह से शुद्धिकरण, तो दो भुट्टे वाली फसल है वो अलग कर दी हमने, एक ही भुट्टा बड़ा वाला है उसको अलग कर दिया, फिर उनको अलग अलग खेत में करके फिर हम उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो इस तरह से आपका हाइब्रिड, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस तरह की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसको 2-3 साल इस प्रक्रिया को आपने अपना लिया और आपके बीज से आपने अलग अलग कर दिए और एक प्योर देसी वेराइटी आपने बना ली, तो आपकी हाइब्रिड से बहुत अच्छा उत्पादन देगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरागत कृषि पद्धतियां है वो काफी अच्छी है और हमको वापिस से उन्हें सीखना चाहिए और उनकी अच्छाइयां हैं उन्हें हमारी परंपरागत जो कृषि पद्धति के साथ में हमको उनमें पुनः अपनाना चाहिए। धीरे धीरे उन पद्धतियों को हम अपनाएंगे तो हमारा जो कृषि करने का तरीका है उसमें आप लोग बाग ये महसूस करेंगे कि काफी लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी परंपरागत जो पद्धति है हमारी।
1: बिल्कुल। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: માઇન બનો સિમકે આપણે આપણે વેસમાં સોહનજી સર જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે આઈસ ભાઈન બનો આપણે કેવું ચંગા કે કૃષિ તકી જુડી જૂની જે પરંપરાએ હે ઈ કેવલ આપણી સાંસ્કૃતિક વિરાસત જ નથી બલકી આપણે વર્ષોનો અનુભવ પ્રકૃતિની હમસને ટકાઉ ખેતીનું જ્ઞાનનું ભંડાર ભી હે આધુનિક કૃષિએ ઉત્પાદન વધાવવાના જે અવસર આલ્યા હે એને સાથે આપણી જે મિટ્ટી હે એને દૂષિત કર્યું હે પાણીને પ્રદૂષિત કરી દીધું હે ને પર્યાવરણ જે હે એને ભી પ્રદૂષિત કરી દીધું હે તો એવામાં આપણને આ સમજવાની જરૂરત હે કે જૂની જે પરંપરાએ હતી એ આપણે બદલે કેમ મહત્વપૂર્ણ હતી ને અવડેના ટાઈમમાં આપણને હરતે એને કામે લેવો હે ને આપણી ખેતીને અસલ બનાવીને રાખવાને હાથે હાથે આપણે પર્યાવરણને ભી સુરક્ષિત રાખવું હે તો આશા કરો હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમકે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું તો સૂટા તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા

0: महिलाओं को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हां, ये भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारे आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय लेकर हम हाजिर हैं। साथियों आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जागरूक परिवार सुरक्षित भविष्य को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि माता पिता अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दुख न मिले, कोई परेशानी न आए। लेकिन साथियों जीवन की सच्चाई ये है कि जीवन में कभी न कभी संकट तो जरूर आता है। कभी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव देखा जाता है, तो कभी दोस्तों में गलतफहमी और कभी असफलता का डर। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए श्रोता साथियों पहले मनोरंजन करते हैं, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय आपको बता चुकी हूँ कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे जागरूक परिवार और सुरक्षित भविष्य के बारे में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले भी बताया था कि हर माता पिता अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रोता साथियों, कभी बच्चों में पढ़ाई का दबाव देखा जाता है, लेकिन देखते हैं कि कई ऐसे पल भी बच्चों के जीवन में आते हैं जब बच्चों को खुद मजबूत बनकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं साथियों कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को संकट से लड़ना सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें इतना बचा रहे हैं कि वो मुश्किलों का सामना करना ही नहीं सीख पा रहे हैं? इन सभी सवालों के उत्तर श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए साथियों, सुनते हैं यह रेडियो नाटक मजबूत बच्चे समझदार परवरिश।
1: अरे, आजकल के बच्चों को देखकर कभी कभी चिंता होने लगती है।
2: नमस्ते सुमन।
1: अरे नेहा, नमस्ते, आओ बैठो।
2: क्या सोच रही हो इतनी गहराई से?
1: बस बच्चों के बारे में सोच रही हूँ।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे, कल मेरे बेटे को थोड़ा ज्यादा होमवर्क मिला, बस वही देखकर वह परेशान हो गया।
2: अरे, ये तो मेरे घर में भी होता है।
1: सच?
2: हाँ, मेरी बेटी भी कहीं बार छोटी सी परेशानी को देखकर कह देती है, मम्मी मुझसे नहीं होगा।
1: यही तो चिंता की बात है नेहा।
2: क्यों?
1: अगर बच्चे छोटी छोटी बातों से घबरा जाएं, तो जीवन के बड़े संकटों का सामना कैसे करेंगे?
2: तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन आजकल के बच्चे पहले जैसे मजबूत नहीं रहे।
1: हाँ नेहा, असल में गलती बच्चों की नहीं, कई बार माता पिता की होती है।
2: हमारी?
1: हाँ।
2: कैसे?
1: हम बच्चों को हर समस्या से बचाने की कोशिश करते हैं।
2: तो इसमें क्या गलत है?
1: गलती यह है नेहा कि जब बच्चे हर समस्या से बचाए जाते हैं, तो वे समस्याओं से लड़ना सीख ही नहीं पाते।
2: तुम्हारी बात सच है, लेकिन हमें डर लगता है कहीं बच्चे परेशान न हो जाएं।
1: देखो नेहा, परेशानी से बचने से ज्यादा परेशानी का सामना करना सिखाना है।
2: मतलब?
1: अरे, अगर बच्चा किसी मुश्किल में है तो तुरंत समाधान हमें नहीं देना है।
2: फिर
1: हमें उससे पूछना है कि तुम्हें क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है।
2: अच्छा, इससे बच्चा खुद सोचने लगेगा।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन एक बात और है।
1: क्या?
2: आजकल के बच्चे असफलता से बहुत डरते हैं।
1: यह तो सच है।
2: अगर परीक्षा में कम नंबर आ जाए तो भी बच्चे दुखी हो जाते हैं।
1: हाँ नेहा, इसलिए हमें उन्हें सिखाना होगा कि असफलता भी सीखने का मौका है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: अगर हम उसे गिरने से ही रोक दें तो वह चलना कभी नहीं सीखेगा।
2: सही कहा तुमने। सुमन, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले बच्चों को धैर्य सिखाना चाहिए।
2: धैर्य क्यों?
1: क्योंकि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता।
2: हाँ, कई बार समय लगता है।
1: दूसरी चीज है आत्मविश्वास।
2: सुमन, अगर बच्चों को खुद पर भरोसा होगा तो वह मुश्किलों से नहीं डरेंगे।
1: बिल्कुल।
2: सुमन, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: कई बार बच्चे अपनी समस्याएं बताने से डरते हैं।
1: क्यों?
2: उन्हें लगता है कि मम्मी पापा डांटेंगे।
1: यही तो समस्या है नेहा।
2: तो हमें क्या करना चाहिए सुमन?
1: हमें बच्चों के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता बनाना चाहिए।
2: वो कैसे?
1: अगर बच्चे खुलकर बात करें तो उनकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है नेहा। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि मम्मी पापा हमेशा उनके साथ हैं। और एक और जरूरी बात नेहा।
2: क्या?
1: बच्चों को हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी होगी।
2: जैसे?
1: अपना कमरा साफ करना, अपना स्कूल बैग तैयार करना, घर के छोटे काम करना। इससे बच्चे जिम्मेदार बनते हैं।
2: सुमन, मुझे लगता है कि बच्चों को समस्या से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम उन्हें मजबूत बनाएंगे तो वे जीवन में आगे बढ़ेंगे।
0: तो दोस्तों, आपने ये सुना दो माताओं की सार्थक बातचीत को। इस नाटक में हमें सिर्फ यही जानने को मिला कि बच्चों को हर परेशानी से बचाने की बजाय उन्हें परेशानी से लड़ना सिखाना चाहिए। जैसा कि हमने सुना साथियों कि दो माताएं बता रही थी कि बच्चों को हमें धैर्य सिखाना चाहिए, आत्मविश्वास सिखाना चाहिए, समस्या का समाधान सिखाना चाहिए सकारात्मक सोच के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों, जो बच्चे संकट से लड़ना सीख जाते हैं वही जीवन में सफल और मजबूत बनते हैं, और यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी है, और मैं जैसा कि देख रही हूँ कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। कुछ बातें रह गई थी जो आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चों की परवरिश केवल उन्हें पढ़ाना लिखाना या फिर उनकी हर जरूरत को पूरी करना नहीं होता, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाना भी उतना ही जरूरी होता है। श्रोता साथियों, माता पिता का स्वाभाविक प्रेम ये चाहता है कि बच्चे किसी भी परेशानी से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन वास्तव में सच्चाई तो ये है कि हर परेशानी से बच्चों को बचाना उन्हें कमजोर बना सकता है। श्रोता साथियों, हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है। जब हमारे बच्चे ये समझ जाएंगे कि गिरकर भी उठना ही जीवन का असली साहस है, तो वे चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका साहस के साथ सामना करेंगे। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, इस पर भी श्रोता साथियों आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: ప్రభాకర్ బంబేబో ఇనామి నామో
1: అక్కడ బక్కడ బంబే బంబే.

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा विषय जो हमारे सपनों और हमारी वास्तविक उपलब्धियों के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार को पहचानने में मदद करता है। श्रोता साथियों, विषय है कम्फर्ट जोन से निकलना। यानी कि श्रोता साथियों, हम सभी अपनी जिंदगी में सुरक्षित और आसान रास्ते चुनना पसंद करते हैं, जहाँ जोखिम कम हो, मेहनत कम करनी पड़े और चुनौतियों का सामना न करना पड़े।
0: जी जी।
1: लेकिन क्या आपने सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ इसी आरामदायक घेरे के बाहर हमारा इंतजार कर रही है? तो आज का ये कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है कि हमारे श्रोता साथी कम्फर्ट जोन से कैसे बाहर निकले।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज युवा साथियों से बातें तो हमारी ढेर सारी होंगी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जैसा कि युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम के माध्यम से अच्छा लगता है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है,
1: बिल्कुल,
0: कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को लेकर। दोस्तों, हम देखते हैं कि जीवन हमारी एक यात्रा है और
1: हाँ।
0: इस यात्रा में जागृति जी हर दिन हमें नए रास्ते, नई चुनौतियाँ और नए अवसर तो मिलते ही रहते हैं,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अक्सर हम एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ सब कुछ सुरक्षित, परिचित और आसान हमें लगता है, और इसी जगह को हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं।
1: जी हाँ कशिश,
0: कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन वह मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिनमें उसे जोखिम कम दिखाई देता है,
1: बिल्कुल।
0: यहाँ डर कम होता है साथियों, असफलता की संभावनाएं कम महसूस होती है और मन को एक सुरक्षित एहसास होता है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यही सुरक्षा जागृति जी धीरे धीरे हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि जो केवल आराम को चुनता है वो अक्सर अपने सपनों से दूर रह जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, युवा अवस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और रचनात्मक समय होता है। यही वो उम्र है जब सपने देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाती है।
0: जी जी।
1: लेकिन बहुत से युवा असफलता के डर से नई शुरुआतें नहीं कर पाते कशिश। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन डरता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है लेकिन जोखिम लेने से घबराता है,
0: बिल्कुल।
1: कोई अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाना चाहता है लेकिन लोगों की आलोचना का डर उसे रोक देता है।
0: जी जी।
1: यहीं से कंफर्ट जोन की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कहा गया है कि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं बल्कि नया व्यक्तित्व भी मिलता है। हम देखते हैं कशिश की, जब हम बार बार एक ही काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसी का आदी हो जाता है,
0: बिल्कुल।
1: नई परिस्थितियां हमें असहज लगने लगती है, धीरे धीरे हम जोखिम लेने की क्षमता खोने लगते हैं, हम नए लोगों से मिलने से बचते हैं, नई जिम्मेदारियों से घबराते हैं, नए अवसरों को ठुकराने लगते हैं और फिर जीवन एक ही जगह ठहर जाता है,
0: बिल्कुल।
1: दुनिया आगे बढ़ती रहती है लेकिन हम वहीं खड़े रह जाते हैं,
0: बिल्कुल। जागृति जी, जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से युवा साथियों को अगर बताएं तो युवा साथियों कल्पना कीजिए कि एक पक्षी पूरे जीवन अपने घोंसले में ही बैठा रहे,
1: बिल्कुल।
0: उसे भोजन मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए और मौसम से बचाव भी हो जाए, लेकिन क्या वह कभी उड़ना सीख पाएगा? नहीं साथियों। उसी प्रकार जागृति जी, मनुष्य भी यदि हमेशा परिचित परिस्थितियों में ही बना रहे तो उसकी प्रतिभा सीमित रह जाएगी।
1: जी हाँ।
0: वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान नहीं पाएगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कंफर्ट जोन बुरा नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसमें हमेशा रहना विकास के रास्ते को रोक देता है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने अवसरों की कमी नहीं है। शिक्षा, तकनीक, खेल, कला और कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य जैसे अनेक क्षेत्र खुले हैं,
1: बिल्कुल।
0: फिर भी जागृति जी, कई युवा केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा।
1: जी हाँ।
0: और यही डर कंफर्ट जोन की दीवारें बनाता है,
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि आराम के क्षेत्र में रहकर हासिल नहीं की गई है। हर वैज्ञानिक ने प्रयोग किए, हर खिलाड़ी ने कठिन अभ्यास किया, हर सफल उद्यमी ने जोखिम उठाया, हर महान नेता ने चुनौतियों का सामना किया। अगर वह केवल सुरक्षित रास्ते चुनते तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। सफलता हमेशा उन लोगों को पसंद करती है श्रोताओं, जो कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। हम कह सकते हैं कशिश कि जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ संभावना भी होती है,
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सबसे बड़ी बाधा है असफलता का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं हार गया तो क्या होगा, जैसा कि आपने बताया था, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, लेकिन सच्चाई ये है श्रोताओं कि असफलता सफलता का दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक होती है,
0: बिल्कुल।
1: हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हर हार हमें मजबूत बनाती है और हर संघर्ष हमें बेहतर इंसान बनाती है,
0: बिल्कुल। जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही है और विषय भी काफी महत्वपूर्ण है आज के इस कार्यक्रम में,
1: बिल्कुल,
0: हमारा कि हमारे युवा साथी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले।
1: जी हाँ।
0: तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में,
1: बिल्कुल। तो साथियों, बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी कि कंफर्ट जोन से युवा साथी किस तरह से बाहर निकले और सफलता की नई उड़ान भरे।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, हमने गीत से पहले जाना था कि आखिर कंफर्ट जोन होता क्या है, युवाओं के लिए विषय क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही कंफर्ट जोन हमें कैसे रोकता है, सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर क्यों मिलती है, ये सारी बातें गीत से पहले रही थी कशिश। यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि सीखने की आदत हमारे अंदर हमें विकसित करनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जो युवा सीखना बंद कर देता है उनका विकास भी रुक जाता है। श्रोताओं, नई किताबें पढ़िए, नए कौशल सीखिए, नई तकनीक को समझिए, नई भाषा सीखिए, नई जिम्मेदारियां स्वीकार कीजिए। हर नया अनुभव आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेगा। याद रखिए, सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, जीवन स्वयं सबसे बड़ा विद्यालय है।
1: बिल्कुल।
0: और कहा भी क्या है कि जो सीखता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता रहता है।
1: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कुछ नया किया है उन्होंने जोखिम तो उठाए हैं ही।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि श्रोता साथियों, एक छात्र पहली बार मंच पर बोलता है, एक खिलाड़ी पहली बार बड़े मैदान में उतरता है, एक उद्यमी नया व्यवसाय शुरू करता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। जागृति जी, हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहकर सफल नहीं हुआ।
0: बिल्कुल।
1: हर उपलब्धि की शुरुआत दोस्तों उस क्षण से होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। देख सकते हैं कि हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या असफलता का भय है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सच ये है कि असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
0: जी हाँ।
1: जब बच्चा चलना सीखता है जागृति जी, तो वो कई बार गिरता है। जब किसान खेती करते हैं और देखते हैं कि जब किसान खेती करते हैं तो कई बार असफल होते हैं, क्योंकि हर मौसम एक जैसा नहीं होता साथियों।
0: जी हाँ।
1: जब खिलाड़ी अभ्यास करता है तो हर मैच नहीं जीतता, फिर भी वे प्रयास करना नहीं छोड़ते। देखते हैं कि जीवन में असफलता हमें मजबूत तो बनाती है ही और अनुभव भी देती है, साथ ही सफलता के लिए तैयार भी करती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम अचानक बहुत बड़ा जोखिम उठा लें, छोटे छोटे कदम भी पर्याप्त हैं। श्रोताओं, अगर हम लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो छोटी सभा से शुरुआत करें। अगर नई जिम्मेदारियों से घबराते हैं तो एक छोटा कार्य स्वीकार करें। अगर नया कौशल सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा समय दें, यानी कि धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे बढ़ने लगेगा।
1: जी।
0: बहुत से युवा इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते कशिश, क्योंकि वे दूसरों से तुलना करते रहते हैं। कोई दोस्त उनसे ज्यादा सफल दिखाई देता है, कोई अधिक प्रतिभाशाली लगता है, कोई अधिक लोकप्रिय होता है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तब कंफर्ट जोन अपने आप टूटने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों से नहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ लगाइए।
1: जी हाँ। अब यही अगर डिजिटल युग की बात की जाए तो देखते हैं कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने सुविधाएं तो दी हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार युवाओं को एक डिजिटल कंफर्ट जोन में भी बांध दिया है। घंटों स्क्रीन पर समय बिताने से वास्तविक जीवन के अनुभव कम होते जा रहे हैं हमारे युवा साथियों में। ऐसे में हमारे युवाओं को ये चाहिए कि वे खेलकूद में भाग लें।
0: जी हाँ।
1: सामाजिक गतिविधियों से जुड़ें, पुस्तकें पढ़ें और प्रकृति के साथ समय बिताएं।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, यही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। साथ ही स्वयं पर विश्वास रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। हो सकता है दोस्तों कि अभी हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब आप उन चुनौतियों का सामना करेंगे तब आपको अपनी क्षमता का वास्तविक परिचय मिल जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए दोस्तों कि जहां डर समाप्त होता है वहीं विकास शुरू होता है। जहां सुविधा क्षेत्र समाप्त होता है वहीं संभावनाओं का संसार आरंभ होता है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि संघर्ष के बिना नहीं मिलती। बीज को भी वृक्ष बनने के लिए मिट्टी चीरनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: नदी को समुद्र तक पहुँचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। सूरज को भी चमकने के लिए हर सुबह उगना पड़ता है।
1: जी जी।
0: इसी तरह युवाओं को भी अपने सपनों तक पहुँचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं हम आपको यही कहना चाहेंगे कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए अवसर बन रहे हैं, नई चुनौतियाँ सामने आ रही है। ऐसे समय में जो युवा केवल आराम तलाशते रहेंगे वे पीछे रह जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सीखने, बदलने और जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे वही भविष्य का नेतृत्व कर पाएंगे। कशिश
1: जी हाँ।
0: आज का समय साहसी युवाओं का समय है। श्रोताओं, आज का समय नए विचारों का समय है, आज का समय बड़े सपनों का समय है, इसीलिए भविष्य उनका है जो बदलाव को अपनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो याद रखिए श्रोता साथियों, जीवन की सबसे खूबसूरत उपलब्धि हमारे कम्फर्ट जोन के बाहर हमारा इंतजार कर रही है। जिस दिन हम डर से ऊपर उड़ जाएंगे उसी दिन हमारी वास्तविक यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: जी
0: जिस
1: हाँ।
0: दिन हम नई चुनौतियों को स्वीकार कर लेंगे कशिश, उसी दिन हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जिस दिन हम असफलता से डरना छोड़ देंगे श्रोता साथी, उसी दिन सफलता हमारी ओर बढ़ना शुरू कर देगी। इसीलिए आज स्वयं से एक वादा कीजिए कि मैं अवसरों से नहीं हारूंगी या नहीं हारूंगा, मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं चुनौतियों का सामना करूंगी और मैं अपने सपनों को आराम की दीवारों में कैद नहीं होने दूंगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जीवन का असली आनंद सुरक्षित किनारों पर खड़े रहने में नहीं बल्कि नई दिशा में आगे बढ़ने से है। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस आपको यही कहना चाहेंगे कि आराम की सीमाओं को तोड़ दीजिए, हौसलों की उड़ान को उड़ने दो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पहचान दीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हुई, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और यहाँ पर गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से कंफर्ट जोन को लेकर कि युवा साथी कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम ये मान लेते हैं अंजलि कि जो समस्या आज दिखाई नहीं दे रही वो कल भी नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य अचानक नहीं आता,
0: बिल्कुल
1: वो हमारे आज के फैसलों से बनता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज न करें।
0: बिल्कुल
1: आज के इस विषय पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज न करें। श्रोताओं, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आने वाली परिस्थितियों को समय रहते समझ लेते हैं अंजलि,
1: बिल्कुल,
0: और तैयारी कर लेते हैं। दूसरे वे जो ये सोच कर आगे बढ़ते हैं कि जब समस्या आएगी तब देख लेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आने वाले समय को समझने में चुप जाते हैं समय उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि भविष्य की चिंता नहीं तैयारी जरूरी है। अक्सर युवा सोचते हैं कि अभी तो बहुत सारा समय है,
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई बाद में कर लेंगे, कौशल बाद में सीख लेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बाद में कर लेंगे, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि एक उदाहरण है जो आप समझिए। बातचीत शुरू होती है बच्चे और शिक्षक के बीच में। बच्चे का नाम था जागृति जी राहुल। राहुल कहता है, यार अभी से भविष्य की चिंता क्यों करें, जो होगा देखा जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक कहते हैं कि बेटा, किसान भी यही सोच ले कि बारिश आएगी तब खेत तैयार करेंगे तो क्या फसल अच्छी होगी। राहुल ने बोला, नहीं सर। शिक्षक कहते हैं कि फिर जीवन की फसल बिना तैयारी के कैसे अच्छी होगी। तो श्रोताओं, यही जीवन का सत्य है। भविष्य की चिंता नहीं करनी है बल्कि तैयारी जरूरी है। अगर हम तैयारी रखेंगे जागृति जी, तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल,
1: हमें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। इसलिए भविष्य की पहली चुनौती है लगातार सीखते रहना। जो सीखना नहीं छोड़ते हैं वही भविष्य को जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम नहीं है, बल्कि भविष्य को समझते हुए उसके लिए तैयारी करने का नाम भी है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र आने वाली चुनौतियों को समय रहते पहचान लेता है, वो प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो भविष्य की समस्याओं को अनदेखा करता है उसे बाद में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए श्रोता साथी, ये आवश्यक है कि हम भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है अंजलि। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में केवल वर्तमान की सुविधाओं में खो जाना बुद्धिमानी नहीं है। यदि हम आने वाले समय की आवश्यकताओं और समस्याओं को नहीं समझेंगे तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। भविष्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समय रहते तैयारी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम देखते हैं कि तकनीक से दुनिया बदल रही है। नई तकनीकें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल और नए रोजगार लगातार सामने आ रहे हैं। जो युवा सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि यदि कोई व्यक्ति आज भी पुराने तरीकों से ही काम करता है और नई तकनीक सीखने से मना कर दे तो क्या वो प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसने अभी की कोई भी तकनीक को नहीं सीखा।
0: जी
1: हाँ। इसलिए कहा जाता है जागृति जी कि लगातार सीखते रहना चाहिए, हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से दिमाग बीमार हो जाता है और हमें दिमाग को बीमार नहीं करना है। उसके लिए लगातार नई नई तकनीक व नया नया सीखते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन। आज हम देख रहे हैं कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और जल संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यदि आज हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, जल और जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार नहीं अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए पर्यावरण संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं है श्रोताओं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का भी आधार है। रोजगार और कौशल विकास भी भविष्य की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई पारंपरिक रोजगार समाप्त हो रहे हैं और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे युवा साथियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि नए नए कौशल को सीखना है, तकनीक ज्ञान को प्राप्त करना है, स्वयं को समय के अनुसार ढालने की कोशिश करनी है। जो युवा सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे वही भविष्य में सफल हो पाएंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पर्यावरण संकट गहरा रहा है, आगे हम जानेंगे मानसिक तनाव और अकेलापन की बढ़ती चीजों को लेकर, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करना है, और जैसा कि गीत से पहले जागृति जी आपने पर्यावरण संकट के बारे में बताया था, और अब यही बात करते हैं मानसिक तनाव और अकेलेपन की जो चीजें लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर। तो श्रोता साथियों, भविष्य की एक गंभीर चुनौती है मानसिक तनाव। हम देखते हैं कि आज बहुत से जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से अकेला महसूस करते हैं। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझते हैं। तुलना करना और हर समय प्रदर्शन की चिंता करना युवाओं को तनाव की ओर ले जाता है। याद रखिए श्रोताओं, हमारी असली पहचान लाइक्स और फॉलोअर्स से नहीं बल्कि हमारे चरित्र कर्म से बनती है। हमेशा हमें दूसरों से नहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ लगानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, आज के जमाने में मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने बताया था कि आज के समय में प्रतिस्पर्धाएं, अपेक्षा और सामाजिक दबाव युवाओं के मन पर प्रभाव डाल रही है। वो चिंता में रहते, तनाव में रहते, अकेलेपन की समस्या उनके साथ बढ़ रही है। इसीलिए श्रोता साथियों, मानसिक रूप से मजबूत बनना, सकारात्मक सोच विकसित करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अंजलि मानसिक रूप से मजबूत होता है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी भविष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम देखते हैं अंजलि कि आधुनिकता और तकनीकी विकास के बीच यदि मानवता, संवेदनशीलता, ईमानदारी और नैतिकता कमजोर पड़ जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है।
0: जी जी।
1: इसीलिए हमारे युवा साथियों को, श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्यों को भी अपनाना होगा। यही मूल्य समाज को मजबूत और समृद्ध बनाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अभी के समय की सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और कौशल की। इसके लिए श्रोता साथियों, आप एक संवाद सुनिए जो दो लोगों का है। जैसे कि एक लड़का है अमन और उसके सलाहकार। अमन बोलता है कि मेरे पास डिग्री है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। उसका जो सलाहकार है जागृति जी, वो उसे बताता है कि डिग्री के साथ आपने कोई विशेष कौशल सीखा है क्या? अमन कहता है कोई विशेष कौशल नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा। सलाहकार कहता है अरे बेटा, आज दुनिया कितनी बदल गई है।
1: बिल्कुल,
0: प्रमाण पत्र से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए श्रोता साथियों, कहा गया है कि भविष्य भी उन्हीं का है जो सीखने और बदलने के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम सिर्फ प्रमाण पत्र के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि एक राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। यदि युवा जागरूक, शिक्षित, जिम्मेदार और दूरदर्शी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि युवा केवल वर्तमान के सुख और सुविधाओं में खो जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों को अनदेखा कर देंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए श्रोताओं, युवाओं को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझना होगा। वास्तव में भविष्य कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, भविष्य आज के कार्यों और निर्णयों का परिणाम होता है। हम जैसा आज सोचते हैं वैसा ही कल बनता है, इसीलिए हमें हर क्षेत्र में दूरदर्शिता अपनानी होगी और आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात करें मूल्यों के संकट की, तो श्रोता साथियों, तकनीक और विकास के बीच सबसे बड़ी चुनौती मानव मूल्यों को बचाए रखना भी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमारे पास धन है लेकिन ईमानदारी नहीं है, ज्ञान है लेकिन संवेदनशीलता नहीं है, शक्ति है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, तो विकास अधूरा है। आज जरूरत है श्रोताओं, अपने भीतर करुणा, सत्य, अनुशासन और सेवा की भावनाओं को बनाए रखने की। सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है जागृति जी, यह आत्मनिर्भरता, जागरूकता और जिम्मेदार का नाम है। जब युवा भविष्य की चुनौती को पहचानता है, उसकी तैयारी करता है और समाज के विकास में योगदान देता है, तभी सच्चे स्वराज का सपना पूरा होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज करना केवल एक भूल नहीं बल्कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ अन्याय करने जैसा है। इतिहास इस बात का साक्षी अंजलि कि जो समाज समय की आहट को समझते हैं वे विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, जबकि जो चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं उन्हें बाद में कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी, तकनीकी बदलाव, स्वास्थ्य संकट, संसाधनों की कमी और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आवश्यकता इस बात की श्रोताओं की हम इन समस्याओं को केवल चर्चा का विषय न बनाए बल्कि उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि भविष्य अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह हर दिन हमारे सामने छोटे छोटे संकेत भेजता है।
1: बिल्कुल,
0: कभी बदलते मौसम के रूप में, तो कभी नई तकनीक के रूप में, तो कभी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के रूप में, और कभी हमारे अपने स्वास्थ्य व संबंधों के रूप में। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं जागृति जी, वे भविष्य के निर्माता बनते हैं, और जो उन्हें अनदेखा कर देते हैं वे परिस्थितियों के पीछे चलने को मजबूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों आज ही निर्णय लीजिए कि आप आने वाली चुनौतियों से डरेंगे नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और समाज से जुड़ेंगे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। याद रखिए श्रोता साथियों कि भविष्य की चुनौतियां बाधाएं नहीं होती, वे हमारी तैयारी की परीक्षा होती हैं, और जो जग जाता है वही कल इतिहास रचता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि भविष्य उन्हीं का होता है जो आने वाले कल की तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। जो समय की चेतावनियों को सुन लेते हैं वही समय के निर्माता बनते हैं। इसलिए आज जागिए, सजग बनिए, तैयारी कीजिए और ऐसा भविष्य गढ़िए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी रही हमारे श्रोता साथियों से,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: समर्थ आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सहजन के स्वास्थ्य लाभ को लेकर। हम देखते हैं कशिश के हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनमें औषधीय गुणों का खजाना छिपा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। ऐसा ही एक पौधा है सहजन, जिसे मोरिंगा कहा जाता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम जानेंगे सहजन क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक है और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें इसी विषय को लेकर आज कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत पहले सुनवा दें हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सहजन यानी कि मोरिंगा के स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें रही थी कि हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे मौजूद होते हैं जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सहजन भी अंजलि जी उन्हीं औषधीय पौधों में से एक है। अगर बात करें तो दोस्तों सहजन जो है वो एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है जिसकी पत्तियां, फलियां और फूल के साथ साथ बीज भी उपयोगी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, भारत के कई हिस्सों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है।
1: जी जी।
0: अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो सहजन का विशेष महत्व होता है। इसे श्रोता साथियों पोषण और औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है।
1: जी हाँ, यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि पोषक तत्वों का खजाना होता है सहजन। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
0: जी
1: हम
0: हाँ।
1: देखते हैं कशिश की, इसी कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम सहजन की सब्जी का या किसी भी तरीके से सहजन का सेवन करते हैं तो इसके कई सारे लाभ हमारे शरीर पर हमें देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि कशिश, आज के समय में मजबूत इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। सहजन में मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर संक्रमणों से लड़ने में अधिक सक्षम बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अगर बात करें आँखों के स्वास्थ्य की तो देखते हैं कि सहजन आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों सहजन में विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। यह आँखों की रोशनी को बनाए रखने और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, अगर बच्चों और युवाओं के लिए बताया जाए तो उनके जीवन में इसका विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में युवाओं में और बच्चों में सोशल मीडिया का या फिर कहें कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण आंखों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं उन्हें हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सहजन जैसे जो औषधीय पौधे होते हैं वो हमारे बच्चों और युवाओं के लिए ढेर सारे फायदे लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति सहजन को हड्डियों के लिए उपयोगी बनाती है।
0: जी हाँ।
1: बढ़ते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। मजबूत हड्डियां स्वस्थ जीवन का आधार होती हैं। आज के समय में कशिश हम देख रहे हैं कि कई लोगों को हड्डियों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं हो रही है।
0: बिल्कुल अंजलि,
1: ऐसे में ये औषधीय पौधे जो होते हैं वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। आयरन की पर्याप्त मात्रा होने के कारण सहजन श्रोता साथियों शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है।
0: बिल्कुल।
1: खासकर उन लोगों के लिए कशिश जो आयरन की कमी से जूझ रहे हैं, एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए सहजन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कुछ अध्ययनों में पाया गया श्रोता साथियों कि सहजन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए मधुमेह रोगियों को किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें हृदय स्वास्थ्य की तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं।
1: जी जी।
0: साथ ही अंजलि जी, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इनका सेवन लाभदायक हमारे लिए हो सकता है। अगर बात करें पाचन तंत्र की तो सहजन में फाइबर भी पाया जाता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल।
0: और फाइबर जो है वो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही कब्ज जैसी जो समस्याएं होती है उनसे भी हमारे श्रोता साथियों को राहत दिलाने में ये सहायक है।
1: जी जी।
0: दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ पाचन पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में अगर आप सहजन का सेवन करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना के रखेगा और जो समस्याएं हमें होती है दस्त और कब्ज की समस्या उनसे भी राहत दिलाएगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है सहजन को लेकर। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, किस तरीके से सहजन के ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं, इसी के साथ कशिश यह त्वचा और बालों के लिए भी लाभदायक है। सहजन में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये त्वचा को पोषण देने और बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सहजन पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है। संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम के साथ इसका सेवन वजन प्रबंधन में मदद करता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के युवा कशिश अक्सर फास्ट फूड पैकेट वाले खाद्य पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन स्वास्थ्य का वास्तविक आधार प्रकृति में ही छिपा है। सहजन जैसे पौधे श्रोता साथियों हमें ये सिखाते हैं कि कई बार हमारे घर और गांव के आसपास मौजूद को बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए औषधीय तौर पर काम आ सकते हैं। यदि युवा पीढ़ी प्राकृतिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपनाए तो भविष्य में कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि सहजन का उपयोग हमें कैसे करना है, तो दोस्तों सहजन का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसकी फली की सब्जियां बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कहीं पर तो श्रोता साथियों पत्तियों का साग भी बनाया जाता है। साथ ही हम इसकी पत्तियों का उपयोग सूप के तौर पर भी कर सकते हैं श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ अंजलि जी, हम देखते हैं कि कहीं पर इसका पाउडर भी उपयोग में लिया जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, सहजन के पत्तों से हम हर्बल पेय भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दाल में भी सहजन की फली का इस्तेमाल किया जाता है अंजलि जी। लेकिन यहाँ पर हम हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन दोस्तों नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप सहजन का इस्तेमाल भी श्रोता साथियों उचित मात्रा में ही करें।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम किसी भी पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सीमित मात्रा में करना है, और अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे शरीर में उसको खाने से किसी प्रकार का कोई अलग रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। क्योंकि कशिश कुछ औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जो कशिश सभी को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सी बार कुछ चीजों का विपरीत असर भी हमें लोगों पर देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: यही गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी बीमारी की स्थिति में हमें डॉक्टर से आवश्यक परामर्श लेना होगा और संतुलित मात्रा में ही सेवन करना है। श्रोता साथियों, सहजन केवल एक पेड़ नहीं बल्कि पोषण और स्वास्थ्य का अनमोल उपहार है। इसकी पत्तियों से लेकर फलियों तक हर भाग में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता छिपी है।
1: बिल्कुल।
0: कशिश जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने भोजन में स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तब हम न केवल अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जब बाजार में तरह तरह के सप्लीमेंट्स और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े जो पेय पदार्थ उपलब्ध है साथियों,
0: बिल्कुल
1: ऐसे में हमारे पास जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं उनका सेवन करना हमें नहीं भूलना है।
0: बिल्कुल।
1: और सहजन अंजलि जी ऐसा ही एक पौधा है जो हमें सिखाता है कि अच्छी सेहत का रास्ता अक्सर हमारे घर और खेत से होकर ही गुजरता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि सहजन क्या है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
1: बिल्कुल।
0: आशा करते हैं कि सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे सपनों की डायरी पूरी क्यों नहीं हो पाती।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हम सभी के मन में कई सपने होते हैं।
0: जी हाँ,
1: कोई अच्छा शिक्षक बनना चाहता है तो कोई सफल किसान तो कोई व्यवसायी, कोई कलाकार तो कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है। कशिश, हम अपने सपनों को मन में संजोते हैं, कभी डायरी में लिखते हैं तो कभी दूसरों से साझा करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सपनों की डायरी के कई पन्ने अधूरे रह जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे सपने गलत होते हैं? क्या किस्मत हमारा साथ नहीं देती? या फिर कहीं ना कहीं हम स्वयं कुछ ऐसी गतिविधियां कर बैठते हैं जो हमारे सपनों और हमारी मंजिल के बीच दीवार बन जाती है।
0: जी
1: तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी चर्चा रहेगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा ही रोचक विषय हमारा आपसे बातचीत का है कि हमारे सपनों की डायरी कभी पूरी नहीं होती।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, मनुष्य जीवन यानी कि हमारा जीवन सपनों के बिना अधूरा है, ये बात हम सभी जानते हैं। सपने ही वह शक्ति है साथियों जो हमें आगे बढ़ने, कुछ नया करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि कोई अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है तो कोई सफल व्यवसायी, कोई कलाकार है साथियों तो कोई समाज सेवी बनने का सपना देखता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक रोचक बात तो ये है यहाँ पर कि हमारी सपनों की डायरी कभी पूरी नहीं होती। हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा एक सपना पूरा हुआ अंजलि जी, वैसे ही दूसरा सपना जन्म ले लेता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी कारण से मनुष्य का जीवन निरंतर प्रगति और नए लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है।
1: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि सपने देखना बहुत सुंदर अनुभव है। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन केवल सपना देख लेने से वह पूरा नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अक्सर हम सपनों की ऊंचाई तो तय कर लेते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने वाली सीढ़ियां बनाना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है श्रोता साथियों कि कुछ समय बाद हमारे सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। कई बार हम जानते ही नहीं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। हम दूसरों को देखकर सपने चुन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफल व्यवसायी बन गया तो हम भी वही सपना देखने लगते हैं। किसी को सरकारी नौकरी मिली तो हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब कशिश सपना हमारे मन और क्षमता के रूप नहीं होता तब हम लंबे समय तक उस पर टिक नहीं पाते। सपना तभी सफल होता है श्रोता साथियों जब वह हमारी रुचि, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार हो। इसलिए दोस्तों बहुत से लोग बड़े उत्साह के साथ सपने देखने की शुरुआत करते हैं। कुछ दिन पढ़ाई करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां सामने आती है उनका उत्साह कम होने लगता है। सपनों को पूरा करने वाले लोग असफलताओं से श्रोता साथियों घबराते नहीं है, वे गिर कर फिर उठते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और निरंतर ही सफलता की असली कुंजी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों सपनों की अनंत यात्रा ही जीवन को गतिशील और रोचक बनाती है। यदि अंजलि जी सभी सपने एक साथ पूरे हो जाए तो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सपनों की डायरी कभी पूरी नहीं होने वाली। हम कह सकते हैं दोस्तों कि सपने केवल रात को सोते समय दिखाई देने वाले दृश्य नहीं होते बल्कि वे हमारे जीवन की आकांक्षाएं और लक्ष्य होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि समय हमें अपनी दिशा बताते हैं और भीतर छिपी संभावनाओं को, क्षमताओं को पहचानने का भी अवसर प्रदान करते हैं। अंजलि जी, जिस व्यक्ति के पास कोई सपना नहीं होता उसका जीवन अक्सर उद्देश्यहीन माना जाता है और वही सपने देखने वाला व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने को प्रेरित रहता है। सपने हमारे अंदर आशा, उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करते हैं अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया कि सपना जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रोचक अनुभव होता है, तो ऐसे में दोस्तों बचपन से ही शुरू होती है सपनों की यात्रा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सपनों की डायरी बचपन से ही लिखी जाती है। एक छोटा बच्चा कभी डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कभी शिक्षक, कभी पायलट तो कभी खिलाड़ी बनने की कल्पना करता है।
1: जी जी,
0: और अंजलि जी उसकी कल्पनाएं जो है वो असीमित होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों का स्वरूप भी बदलता रहता है।
1: जी हाँ
0: साथियों, बचपन के कुछ सपने तो पूरे हो जाते हैं लेकिन कुछ कुछ बदल भी जाते हैं और कुछ नए सपनों को जगह दे देते हैं। इस प्रकार सपनों की डायरी जो है वो लगातार विस्तारित होती रहती है।
1: जी हाँ कशिश, कई लोग इसलिए अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाए। लेकिन श्रोता साथियों सच ये है कि बिना असफलता के सफलता का मूल्य समझ में ही नहीं आता।
0: बिल्कुल,
1: हर सफल व्यक्ति के जीवन में कई बार असफलताओं का सामना होता ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें हार नहीं माननी है।
0: जी,
1: असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि टालम टोल की आदत के कारण भी हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। कल से शुरू करेंगे, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हमारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन है।
0: बिल्कुल,
1: समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर टालने से हमारे सपने धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: छोटे छोटे कदम भी हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पर शर्त यह है कि हम उन्हें समय पर उठाएं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखना चाहेंगे साथियों से, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए दोस्तों को पहले हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने कशिश ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि आज के समय में सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने तुलना की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करने लगते हैं। जब हम दूसरों को आगे बढ़ता देखते हैं कशिश, तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए।
1: बिल्कुल,
0: हर व्यक्ति की परिस्थितियां संघर्ष गति अलग होती है। अपने सपनों की यात्रा पर ध्यान देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। आज का समय त्वरित परिणामों का समय बन गया है।
1: जी।
0: लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन जीवन के बड़े सपने धीरे धीरे ही पूरे होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी प्रकार सफलता को भी समय चाहिए होता है। जो लोग धैर्य रखते हैं कशिश, वही अंत में अपने सपनों को साकार कर पाते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पर साथियों हमारी आवश्यकताएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसी कारण हमारे सपनों का स्वरूप भी बदलता रहता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, एक विद्यार्थी का सपना अच्छी शिक्षा प्राप्त करना होता है। पढ़ाई पूरी होने पर उसका सपना अच्छी नौकरी पाने का हो जाता है। फिर नौकरी मिलने के बाद वह बेहतर जीवन, परिवार की खुशहाली और सामाजिक सम्मान के सपने देखने लगता है। अंजलि जी,
0: जी हाँ।
1: यानी कि इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी सपनों की डायरी भरती ही रहती है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो मन नए लक्ष्य की ओर आकर्षित हो जाता है।
0: जी जी।
1: जैसे कि उदाहरण के लिए अंजलि जी, यदि किसी व्यक्ति का सपना घर बनाना है तो वह सपना पूरा हो गया और उसके बाद फिर वह अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और परिवार की खुशहाली के सपने देखने लगता है।
0: जी हाँ।
1: फिर नए व्यवसाय का सपना देखने लगता है। यही कर्म श्रोता साथियों जीवन भर चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सपनों की डायरी का अंतिम पृष्ठ कभी आता ही नहीं है।
0: जी हाँ कशिश, बहुत सी बार संसाधनों की कमी भी होती है और कुछ बार बहाने भी बन जाते हैं। श्रोता साथियों, ये सच है कि कई लोगों के पास संसाधनों की कमी होती है। आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक चुनौतियां उनके रास्ते में आती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक लोगों ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी सफलता हासिल की है। संसाधनों की कमी कोई चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो चुनौती प्रेरणा भी बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे। जैसे कि अपने सपनों को स्पष्ट रूप से हमें लिखना है, बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में हमें बांटना है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा काम करना है, समय का सही उपयोग करना है, असफलता से सीखना है और डरना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना है, धैर्य और विश्वास भी बनाए रखना है। इस तरीके से कशिश हम कह सकते हैं कि हमारे सपनों की डायरी इसलिए अधूरी नहीं रह जाती कि हमारे सपने छोटे या बड़े होते हैं। अक्सर वह इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि हम सपनों को केवल इच्छा समझ लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं। सपना तभी सच बनता है श्रोता साथियों जब उसके साथ मेहनत जुड़ती है, अनुशासन जुड़ता है और लगातार प्रयास जुड़ते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि हर अधूरा सपना हमें यह नहीं बताता कि हम असफल है, बल्कि यह संकेत देता है कि शायद हमें अपने प्रयासों का तरीका बदलने की जरूरत है। जीवन में देर हो सकती है, लेकिन यदि हम आज भी अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे सपनों की डायरी एक नया पन्ना भरना शुरू कर देती है।
1: बिल्कुल,
0: अपने सपनों को केवल कागज पर मत रखने दीजिए दोस्तों, उन्हें अपने कर्मों का हिस्सा बनाइए। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डर कर बैठ नहीं जाते। इसलिए दोस्तों, सपने तभी सच होते हैं जब हम उन्हें देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने की हिम्मत और मेहनत भी करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि मानव सभ्यता की प्रगति का आधार भी सपने ही हैं। साथियों, यदि वैज्ञानिक ने नए आविष्कारों के सपने न देखे होते तो आज दुनिया इतनी विकसित नहीं होती।
0: जी जी।
1: यानी कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। किसी ने श्रोता साथियों उड़ने का सपना देखा और हवाई जहाज बना।
0: बिल्कुल।
1: किसी ने दूर बैठे लोगों से बात करने का सपना देखा और टेलीफोन का आविष्कार किया। इस प्रकार दोस्तों, सपने केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ने का कार्य करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बात करें तो सपनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है अंजलि जी कि उनकी कोई सीमा नहीं होती।
0: जी।
1: मनुष्य जितना प्राप्त करता रहता है उससे आगे की संभावनाएं और सपनों को वह देखने लगता है। ज्ञान बढ़ता है तो जिज्ञासाएं जन्म ले लेती है।
0: बिल्कुल।
1: सफलता मिलती है साथियों तो नई उपलब्धियों की चाह उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है अंजलि जी कि सपने कभी खत्म नहीं होंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी कारण दोस्तों सपनों का संसार अनंत है, मनुष्य की कल्पना शक्ति असीमित है और उसी के साथ उसके सपने भी असीमित होते हैं। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश आपने सही कहा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे। ये कहानी है अधूरी डायरी का आखिरी पन्ना। श्रोता साथियों एक छोटे से गाँव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे बचपन से ही डायरी लिखने का शौक था। उसकी डायरी में रोज की बातें कम और सपने ज्यादा लिखे होते थे। किसी पन्ने पर लिखा होता, मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा। किसी पर, मैं अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनाऊंगा। तो किसी पन्ने पर, मैं अपने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोलूंगा।
1: बिल्कुल।
0: हर नया साल आते ही आरव अपनी डायरी में नए सपने लिखता, लेकिन साल बीत जाता और अधिकांश सपने वैसे ही अधूरे रह जाते।
1: जी जी।
0: धीरे धीरे उसकी डायरी मोटी होती गई, लेकिन सपनों के सामने बने छोटे छोटे खाली खाने कभी टिक नहीं पाए। समय बीता, आरव कॉलेज पहुंचा। वहां भी उसने अपने सपनों की एक नई सूची बनाई। उसने तय किया कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा। शुरुआत के कुछ दिन बहुत मेहनत की, लेकिन फिर दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर समय बिताना, कल से पढ़ूंगा जैसी आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गई। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पन्ने पलटते पलटते वह रुक गया। उसे महसूस हुआ कि पिछले कई वर्षों से वह केवल सपने लिख रहा है, लेकिन उसके लिए लगातार काम नहीं कर पा रहा। उसी समय उसके दादाजी उसके पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? आरव ने उदास होकर कहा, दादाजी मेरी डायरी सपनों से भरी है, लेकिन कोई सपना पूरा ही नहीं हुआ, लगता है मुझसे नहीं होगा। दादाजी मुस्कुराए और उसे खेत की ओर ले गए और वहां उन्होंने दो पौधे दिखाए। एक पौधा हरा भरा था, दूसरा सूखा हुआ। दादाजी बोले, इन दोनों को मैंने एक ही दिन लगाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को रोज पानी पिलाया और दूसरे को कभी कभी। सपना भी पौधों जैसा ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: केवल बीज बो देने से पेड़ नहीं बनता, उसे समय, मेहनत और देखभाल चाहिए होती है।
1: जी हाँ।
0: दादाजी की बात आरव के मन में उतर गई। उस रात उसने कशिश अपनी डायरी में कुछ नया लिखा। आज से मैं सपने कम लिखूंगा और उनके लिए काम ज्यादा करूंगा। अगले दिन उसने एक नियम बनाया, वह रोज अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाता।
1: बिल्कुल।
0: कभी 2 घंटे पढ़ाई, तो कभी कोई नई जानकारी, तो कोई अभ्यास, तो कई तरीके की जो चीजें हैं वो उसी के लिए उपयोग में लेता था। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार उसका मन हार मानने को करता, कई बार दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन इस बार कशिश उसने रुकना नहीं सीखा। 1 साल बाद वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इस बार उसने डायरी बंद नहीं की। उसने अपनी गलतियों को लिखा, फिर से तैयारी शुरू की और दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह लड़का अपना समय बर्बाद कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आरव को अब समय समझ आ चुका था कि सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। तीसरे प्रयास में उसे सफलता मिली। जिस दिन परिणाम आया, वह दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और माता पिता गर्व से उसे देख रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: उस रात उसने फिर अपनी पुरानी डायरी खोली। उसने देखा कि कई सपने अभी भी अधूरे हैं, लेकिन इस बार वह उदास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि सपने पूरे होने से पहले इंसान को बदलना होता है। वो मजबूत बनता है, धैर्यवान बनता है और जिम्मेदार बनता है, तभी सपने पूरे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कुछ वर्षों बाद आरव एक शिक्षक बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय भी शुरू कर दिया, जिसे पक्के घर का सपना जो था उसका बचपन से, उसने उसे भी बना दिया। एक दिन उसकी छोटी बेटी उसकी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उसने पूछा, पापा क्या आपके सारे सपने पूरे हो गए? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, अभी बहुत सारे सपने बाकी हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि सपने पूरे कैसे होते हैं। बेटी ने पूछा, कैसे? आरव ने जवाब दिया, सपने लिखने से नहीं, हर दिन उनके लिए थोड़ा थोड़ा काम करने से पूरे होते हैं। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, सपनों की डायरी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही एक सपना पूरा होता है, जीवन में एक नया सपना मिल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: असली जीत सपनों के पूरे होने से नहीं, बल्कि श्रोता साथियों उन्हें पूरा करने की यात्रा में होती है। इसलिए सपनों को सच करने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, धैर्य, अनुशासन की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: कशिश जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाता है, अपने सपनों की डायरी एक दिन सफलता की कहानी बन जाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आगे भी हम करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल।
2: पा रे गा मा। तुम भी गाओ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर इंसान के पास कुछ सपने होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वही सपने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन कशिश, केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपनी दिनचर्या, अपने निर्णयों और अपने सपनों और अपने प्रयासों का हिस्सा बनाना भी उतना ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम मंजिल तक पहुँचने में देर कर देते हैं, कई बार रास्ता बदलना पड़ता है और कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती। फिर भी जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, प्रयास करना नहीं छोड़ता, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, उसके लिए नए अवसर हमेशा बने रहते हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। कुछ सपनों को समय चाहिए होता है, कुछ को अनुभव चाहिए होता है, तो कुछ को बार बार किए गए प्रयासों की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए दोस्तों, यदि आज आपके सपनों की डायरी का कोई पन्ना अधूरा है तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है कि वह पन्ना अभी लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो।
1: बिल्कुल।
0: महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितनी बार शुरुआत की, बल्कि यह है कि आपने कितनी बार रुकने के बाद फिर से चलना शुरू कर दिया।
1: जी हाँ।
0: हम अपने जीवन के सपनों को केवल कल्पनाओं तक सीमित न रखें, अपने लक्ष्य तय करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान करें और हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाए, क्योंकि समय के साथ वही छोटे कदम एक लंबी यात्रा का रूप लेते हैं और एक दिन हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां कभी केवल हमारी कल्पना पहुंचा करती थी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों, सपनों की डायरी को पूरा करने का रहस्य

0: किसी जादू में नहीं बल्कि निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य में छिपा है। जब ये चारों हमारे साथी बन जाते हैं तब अधूरे पन्ने भी कहानी बन जाते हैं और साधारण सपने भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। यही जीवन की असली सफलता है और यही सपनों का सच्चा सम्मान भी है।
1: जी हाँ दिलीप जी, इसी के साथ हर सपना पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं है। साथियों, कुछ सपने कई बार अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन अधूरे सपने भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे हमें धैर्य, संघर्ष और निरंतर प्रयास करने का महत्व समझाते हैं। कई बार अंजलि जी, असफलता हमें नए सपनों की ओर ले जाती है और जो पहले से भी अधिक सार्थक और सफल साबित हो सकते हैं वही श्रोता साथियों नए सपने होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अधूरे सपनों को निराशा नहीं बल्कि एक सीख के रूप में हमें देखना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: साथ ही हम हमारे श्रोता साथियों से ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, सपनों को साकार करने के लिए कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए मेहनत करता है वही उन्हें वास्तविकता में बदल पाता है। ऐसे में सपनों की डायरी में लिखे हुए लक्ष्य भी तभी पूरे होते हैं साथियों, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, हम उन्हें कर्म के साथ जोड़ते हैं।
0: जी जी,
1: मेहनत और सपनों का संबंध बीज और वृक्ष जैसा है, बिना मेहनत के सपने केवल कल्पना बनकर ही रह जाते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि सपने केवल हमारे मन की इच्छाएं नहीं होते बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, हमारी आशाओं, हमारे भविष्य की दिशा में भी हमारे भविष्य की दिशा को भी दर्शाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम कोई सपना देखते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन को एक नई संभावना से जोड़ते हैं। लेकिन सपनों का मूल्य केवल कशिश उन्हें देखने में नहीं बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविकता में बदलने के प्रयास में छिपा होता है।
1: बिल्कुल,
0: यही कारण है कि जो लोग अपने सपनों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं वे परिणाम चाहे जो भी प्राप्त करें जीवन में बहुत कुछ सीख जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: यह भी समझना आवश्यक है कि हर सपना अपने तय समय पर ही आकार लेता है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कई बार जिम्मेदारियां हमें रोक लेती है।
1: बिल्कुल,
0: तो कई बार हमें अपने रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कशिश कि हमारे सपने समाप्त तो हो गए। जीवन हमेशा नए अवसर देता है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने भीतर की उम्मीद को जीवित रखें और अपने प्रयासों को थमने न दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों तो आपसे कहना चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सपना न हो तो उसका जीवन निरस और निराशीन दिशाहीन हो सकता है। वही नए सपने व्यक्ति को निरंतर सक्रिय और रचनात्मक बनाए रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सपनों का लगातार जन्म लेना जीवन के लिए बहुत जरूरी है अंजलि जी। देखा जाता है कि सपनों की डायरी और आत्मविकास का एक बहुत गहरा संबंध होता है।
0: जी जी,
1: हर नया सपना दोस्तों हमें कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व में सुधार करना पड़ता है।
0: जी जी,
1: इस प्रकार सपनों की यात्रा वास्तव में आत्मविकास की यात्रा भी होती है। जितने अधिक सार्थक सपने होंगे अंजलि जी, उतना ही व्यक्ति का विकास होगा।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हम अपने सपनों को केवल कल्पना की दुनिया तक सीमित न रखें, उन्हें अपने कर्म, अपने संकल्प और अपनी मेहनत से जोड़ें। यदि कोई अपना सपना अधूरा रह भी गया है तो निराश होने के बजाय उससे मिली सीख को अपनाएं। यदि कोई लक्ष्य दूर दिखाई दे रहा है तो छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू करें, क्योंकि सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। सपनों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे हमें साधारण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की वजह देते हैं। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तब यही सपने हमें हार मानने से रोकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारी अंतिम पहचान नहीं है।
1: जी हाँ,
0: आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वही कल सफलता की नई कहानी लिख सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो आगे हम करना चाहेंगे दोस्तों से।
0: जी जी,
1: लेकिन अभी क्यों ना एक और प्यारे से गीत के साथ यहाँ पर हम पहले मनोरंजन करें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है सपनों की डायरी को लेकर, और हम जैसा कि गीत से पहले भी जान पाए थे कि सपने हमारे कभी खत्म नहीं होते अंजलि जी, और कह सकते हैं कि एक अगर सपना पूरा हो गया तो मनुष्य के जीवन में दूसरा सपना जन्म ले लेता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि सपनों का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उनका सकारात्मक होना कितना जरूरी है।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, ऐसे सपने जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए, वास्तव में वही सपने सार्थक होते हैं।
1: जी जी।
0: सकारात्मक सपने जो हैं वो व्यक्ति को जिम्मेदार, संवेदनशील और समाज के प्रति जागरूक बनाते हैं। केवल दोस्तों सफलता ही नहीं बल्कि संतोष भी प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ।
0: कह सकते हैं कि हमारे सपनों की डायरी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि सपने जीवन की निरंतर चलने वाली यात्रा है। एक सपना पूरा है तो दूसरा सपना जन्म ले लेता है।
1: जी जी।
0: यदि प्रक्रिया हमें आगे बढ़ने, सीखने और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है साथियों, वास्तव में सपनों का अंत नहीं बल्कि उनका निरंतर विस्तार, प्रयास करते रहना ही हमें चाहिए। सपनों से भरी ये डायरी ही हमारे जीवन को अर्थ, दिशा और नई उड़ान देती है।
1: बिल्कुल कशिश, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हमने कितने सपने देखे, बल्कि यह है कि हमने अपने सपनों के लिए कितनी ईमानदारी से प्रयास किया। जो व्यक्ति अपने सपनों को जीने का साहस रखता है वह कभी वास्तव में असफल नहीं होता। उसकी यात्रा ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है।
0: जितने
1: सपने देखिए, उन पर विश्वास रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन यही सपने आपके जीवन को नई पहचान, नया उद्देश्य और नई ऊंचाई प्रदान करेंगे।
0: जी हाँ।
1: सपनों की उड़ान तभी सार्थक होती है जब पंख उम्मीद के हो, दिशा लक्ष्य की हो और शक्ति निरंतर प्रयास की हो। इसलिए श्रोता साथियों, यदि हम अपने जीवन पर गहराई से नजर डालें तो पाएंगे कि अधूरे सपनों का दुख केवल इसलिए नहीं होता कि हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पूरी तरह पहचान नहीं पाए। हर व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष करने की क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता को निखारने के लिए समय, समर्पण और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: सपने उसी क्षमता को दिशा देने का काम करते हैं।
0: जी हाँ।
1: जीवन की यात्रा में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं कशिश, जब लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, सहयोग कम मिल पाता है और परिणाम ये होता है कि उम्मीद के अनुसार हमारी चीजें नहीं हो पाती। ऐसे समय में बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य को याद रखते हैं कशिश, वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे जानते हैं कि सफलता केवल मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस प्रयास का नाम है जो हमें पहले से बेहतर इंसान बनाती है। हमें यह भी समझना होगा कि सपनों की तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति की उपलब्धियों से नहीं की जा सकती।
0: जी जी।
1: हर इंसान का जीवन अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है, उसकी यात्रा भी अलग है। इसलिए अपने रास्ते की गति को लेकर निराश होने के बजाय हमें अपने प्रयासों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, स्वयं को बेहतर बनाता रहता है और हार के बाद भी आगे बढ़ता रहता है, वह एक दिन अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि सपने हमारे भविष्य को सही आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों, किसी के द्वारा सही कहा गया है कि यदि आप कोई कल्पना कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप कोई सपना देख सकते हैं तो आप वह प्राप्त बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास सपना है साथियों, तो इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करें।
1: जी जी।
0: और इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अंजलि जी, ये कहना बहुत आसान है बजाय करने के, लेकिन अगर हम श्रोता साथियों वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल कशिश, इसलिए अंत में श्रोता साथियों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सपनों की कीमत उनकी चमक में नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए किए गए संघर्षों में होती है।
0: जी।
1: जो लोग चुनौतियों के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखते हैं, वे एक दिन यह महसूस करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जीत कोई पुरस्कार या उपलब्धि नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जाना है जो कभी अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता था। इसलिए सपनों को संजो कर रखिए, उन्हें कर्म से जोड़िए और विश्वास रखिए कि निरंतर प्रयासों से कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।
0: बिल्कुल।
1: सपने रास्ता दिखाते हैं, मेहनत उस रास्ते पर चलना सिखाती है और धैर्य हमें मंजिल तक पहुंचाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ।
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना कार्यक्रम का पता हमारे साथियों को हम बता दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि श्रोताओं को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को
1: नमस्कार।
0: साथी दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार की। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। इस गीत के अनुरोध करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी और चाचा चाची जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नेरी, अमित जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा और ईशान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शैशा जी सोनवने। सहारनपुरा से जुड़ रही हैं समेद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी, अदीप जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिर शेख, नाजिया नाशिर, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमिद मुजावर, सभिया मुजावर, मख्याल जी मुजावर और जुमिब जी मुजावर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल हैं एसी दीवानगी। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुनीता सिंधी, प्रशांत सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा जी घोड़की। इसी बीच जुनाचार्य जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमो और मानस जी राज। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। कोहका बलाई से जुड़ना चाह रहे उत्तम सिंह जंगील, मोरस जंगील, अनिल कुमार जंगील, अजीत कुमार जंगील, आरुषि और नंदिनी जी जंगील। सुकरी कला से जुड़ रही हैं अमित जंगील, सुकुन जंगील, आरुषि, ओशिका, आदित्य जी जंगील और अंजलि जी जंगील। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एसी दीवानगी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है राजा बाबू, गीत के बोल हैं याद सताए तेरी नींद चुराए। इस गीत की फरमाइश करता है हीरामन वर्मा, पारशमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग सी किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू जी वड़तकर। इस गीत के अनुरोध करता है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ रही हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करते हैं शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी और भी श्रोता साथी। जुन्नाचार्य गाजियाबाद से शिशपाल जी, इसी बीच जुन्नाचार्य हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत सिंह। मजनू का टीला से जुड़ रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुन्नाचार्य ही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहीजी मलिक। इसी बीच जुन्नाचार्य

रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह, शिवांगी जी धाकड़। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। बागपत से जुड़ रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बेटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सोनम देवी जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा और तीशा जी गोस्वामी। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रहे हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोशजी मुणत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपकी अपनी फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला महू से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। भोपालगढ़ राजस्थान से जुड़ना चाह रहे धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जोन डिकेस्ट्रो, रोजे डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलेज डिकेस्ट्रो। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। कुंभारगिरी श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रही अशोक दली, सविता दली, अनिता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ना चाह रहे पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे झारखंड सी मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चलते चलते। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भीड़ शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, गीत के बोल ही चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और शबीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव जी सिंधे। खंडाला से जुड़ना चाह रहे हैं आकाश और प्रिया सरोधी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराब जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कालेगांव जाफराबाद सिंह, सुधाकर राज यादव, प्रशांत राजी जाधव, सचिन वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुम्हारी सानवी देशमुख, कुम्हारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है डाबकी रोड अकोला सी। फिल्म का नाम है दो बदन, गीत के बोल हैं जब चलती है ठंडी हवा। इस गीत को आवाज़ दी है आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शिशला दे मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। पटेल नगर मालोट सी रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झाझोरिया, गंदीप झाझोरिया, अर्जुन झंझोरिया और गुड्डू जी। झारखंड से जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। साथियों, अब जैसा कि आज भी सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था हमारा

और किरण गुप्ता जी। इसी बीच पथरोड से जुड़ रहे हैं विजय अंबाडकर, सुनीता अंबाडकर, अक्षय, रेदिका, ऋषिकेश अंबाडकर। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, परम प्रसिद्ध हीरामन शंडे जी। साथियों गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना ना, नाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। साथियों नरवेल महाराष्ट्र से श्रोता साथी हैं पीएस नवाड़कर, निमा नवाटकर, विशाल नवाकर। महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, नारायण इंगले, आशीष मुहेरकर जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश करबा बराड़ा जिला अंबाला से आई है साथियों। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल हैं, पालकी में हो के सवार चली रे। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका जी, मन्नत गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मैत्रिक, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी। गंजुडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, मियाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं चौकुनाटी बुलंदशहर से मोहम्मद सिद्धेबासी, नगित प्रमनावासी, शहनवाज अबासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरसान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। अमरावती से श्याम कीटे, वनना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे जी। दुर्गापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सुतल कश्यप, सोनू सुरेश जी, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, पालकी में होके सवार चली रे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश आई है लगन पंडरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। और भी श्रोता साथी जाकुल राजस्थान से जुड़ रहे हैं शमुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनालाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। इसी बीच और भी दोस्त बाटापरा छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी जी, धनौरी तेलीवाला से निशाल सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी, आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिया, संजीव डाबे राव। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, गीत के बोल है सुना सुना लम्हा लम्हा। फरमाइश करता जुड़ रहे गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासिन हाशमी, शमशल कमर राही। इसी बीच श्रोता साथियों, और भी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं रोहतक से, सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बरका काना से, अफजाल ताज, साइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निफिस शाही, अफजल मलिक। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल है सुना सुना लम्हा लम्हा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। भवानी नगर पेठन से, फिल्म का नाम है दम लगा के हईशा। गीत के बोल हैं मोह मोह के धागे। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में भवानी नगर पेठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगा सागर धोंगड़े, हर्षवरंदर अशोक धोंगड़े जी, राशि कार्तिक परी धोंगड़े परिवार सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। इसी बीच श्रोता साथी बाबा कुटीर रायगढ़ से भी जुड़ रहे हैं शिव कुमार चौहान, आशिक चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुक्कू जी। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश की गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मोह मोह के धागे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है हनुमानगढ़ राजस्थान से। श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। फरमाइश करता जुड़ रहे भाई वीरवीर सिंह वडवाल, सुपीर वडवाल, सुखवीर जी, काजल वडवाल, रखवील वडवाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतन, नवीन रंगीला, निशान अनमोल, प्यारा बेटा, चटकू मटकू, महावीर, गीता मलकत, सुखचैन सिंह बूटा। इसी बीच राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, जस्मिन और प्रयागराज भट्ट जी। मलियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भवे जैन, अंशिका जैन। जमशेदपुर से हैं तस्नीम कौसम, इशिता साहनी, डॉक्टर सोनम जी, वर्का काना से नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम, इफ्तिखार इब्राहिम। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पुनम गनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमिता आहूजा जी। और भी साथी हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। संभाजी नगर से जुड़ रहे राजेश साबरे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश आई है हनुमानगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है माय नेम इज़ खान, गीत के बोल है नूरे खुदा। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश योगेश उद्धव कटवासरा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, श्री वैष्णव जी। वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, सुसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े। पुलटाना से दीपाली रामधड़े, स्वराज रामधड़े। अमरावती से सुनैना पवन भोंडे जी। जौनपुर से ईशा अहमद अंसारी, कामरान ईशा, अलमा इशरा, अजरा तबस्सुम। बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौनिन असनानी, मोहम्मद केफ अंसारी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे गुणवंत श्रीवास, कुना श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दो, झारखंड से अब्बास आलम, अहमद अली और निशा जी। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी दोस्त, यूपी से सुरेश चौरसिया, सुबुद चौरसिया और लल्ला चौरसिया जी। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष रथ, जतिन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रजिता खुराना जी। जुड़ना चाह रहे अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, पयम प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी, अशोक गुप्ता जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन शाहू जी, हेमंत नामदेव। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, विदही जोशी, अंकिशा अंशिका जोशी और शिव कुमार शर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं नूरे खुदा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूँगी श्रोता साथियों कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। इसी गीत के साथ ही हम कार्यक्रम से विदा लेंगे। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: भाभी, उस वक्त आपने जो कुछ कहा गुस्से में कहा।
1: हनी, हनी फीड फीड आप।

0: नाम क्या है?
1: रिजवान खान खान।
0: मैं इमरान हूँ और ये साजिदा है। अरे कहाँ चल दी? बस को निकलने को वक्त है अभी।
1: नमाज टाइम।
0: नमाज टाइम?
1: नमाज टाइम
0: अभी यहाँ। अरे भाई नमाज जगह और लोगों को देख कर पड़ी जाती।
1: नो, नमाज जगह और लोगों से नहीं, नियत से पढ़ी जाती है।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट।

सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागर रेडियो 90.8 FM।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।

0: दो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाघ रेडियो वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथ ही जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा विषय जो हमारे सपनों और हमारी वास्तविक उपलब्धियों के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार को पहचानने में मदद करता है। श्रोता साथियों, विषय है कम्फर्ट जोन से निकलना। यानी कि श्रोता साथियों, हम सभी अपनी जिंदगी में सुरक्षित और आसान रास्ते चुनना पसंद करते हैं, जहाँ जोखिम कम हो, मेहनत कम करनी पड़े और चुनौतियों का सामना न करना पड़े।
0: जी जी।
1: लेकिन क्या आपने सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ इसी आरामदायक घेरे के बाहर हमारा इंतजार कर रही है? तो आज का ये कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है कि हमारे श्रोता साथी कम्फर्ट जोन से कैसे बाहर निकले।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर आज युवा साथियों से बातें तो हमारी ढेर सारी होंगी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जैसा कि युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम के माध्यम से अच्छा लगता है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि युवा साथियों, गीत से पहले विषय बता चुके और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है,
1: बिल्कुल,
0: कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को लेकर। दोस्तों, हम देखते हैं कि जीवन हमारी एक यात्रा है और
1: हाँ।
0: इस यात्रा में जागृति जी, हर दिन हमें नए रास्ते, नई चुनौतियाँ और नए अवसर तो मिलते ही रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अक्सर हम एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ सब कुछ सुरक्षित, परिचित और आसान हमें लगता है, और इसी जगह को हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं।
1: जी हाँ कशिश,
0: कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन वह मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति केवल उन्हीं कार्यों को करता है जिनमें उसे जोखिम कम दिखाई देता है,
1: बिल्कुल,
0: यहाँ डर कम होता है साथियों, असफलता की संभावनाएं कम महसूस होती है और मन को एक सुरक्षित एहसास होता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन यही सुरक्षा जागृति जी धीरे धीरे हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा भी बन सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि जो केवल आराम को चुनता है वो अक्सर अपने सपनों से दूर रह जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, युवा अवस्था जीवन का सबसे ऊर्जावान और रचनात्मक समय होता है, यही वो उम्र है जब सपने देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाती है।
0: जी जी,
1: लेकिन बहुत से युवा असफलता के डर से नई शुरुआतें नहीं कर पाते कशिश। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन डरता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है लेकिन जोखिम लेने से घबराता है,
0: बिल्कुल,
1: कोई अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाना चाहता है लेकिन लोगों की आलोचना का डर उसे रोक देता है।
0: जी जी,
1: यहीं से कंफर्ट जोन की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कहा गया है कि डर के आगे सिर्फ जीत नहीं बल्कि नया व्यक्तित्व भी मिलता है। हम देखते हैं कशिश की, जब हम बार बार एक ही काम करते हैं तो हमारा दिमाग उसी का आदि हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: नई परिस्थितियां हमें असहज लगने लगती है, धीरे धीरे हम जोखिम लेने की क्षमता खोने लगते हैं, हम नए लोगों से मिलने से बचते हैं, नई जिम्मेदारियों से घबराते हैं, नए अवसरों को ठुकराने लगते हैं और फिर जीवन एक ही जगह ठहर जाता है,
0: बिल्कुल,
1: दुनिया आगे बढ़ती रहती है लेकिन हम वहीं खड़े रह जाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से युवा साथियों को अगर बताएं तो युवा साथियों, कल्पना कीजिए कि एक पक्षी पूरे जीवन अपने घोंसले में ही बैठा रहे,
1: बिल्कुल,
0: उसे भोजन मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए और मौसम से बचाव भी हो जाए, लेकिन क्या वह कभी उड़ना सीख पाएगा? नहीं साथियों। उसी प्रकार जागृति जी, मनुष्य भी यदि हमेशा परिचित परिस्थितियों में ही बना रहे तो उसकी प्रतिभा सीमित रह जाएगी।
1: जी हाँ,
0: वह अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान नहीं पाएगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कंफर्ट जोन बुरा नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसमें हमेशा रहना विकास के रास्ते को रोक देता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि आज के युवाओं के सामने अवसरों की कमी नहीं है। शिक्षा, तकनीक, खेल, कला और कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य जैसे अनेक क्षेत्र खुले हैं,
1: बिल्कुल,
0: फिर भी जागृति जी, कई युवा केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग
1: हाँ।
0: क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा।
1: जी हाँ,
0: और यही डर कंफर्ट जोन की दीवारें बनाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि आराम के क्षेत्र में रहकर हासिल नहीं की गई है। हर वैज्ञानिक ने प्रयोग किए, हर खिलाड़ी ने कठिन अभ्यास किया, हर सफल उद्यमी ने जोखिम उठाया, हर महान नेता ने चुनौतियों का सामना किया। अगर वह केवल सुरक्षित रास्ते चुनते तो शायद दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। सफलता हमेशा उन लोगों को पसंद करती है श्रोताओं, जो कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। हम कह सकते हैं कशिश कि जहाँ चुनौतियाँ होती हैं वहाँ संभावना भी होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सबसे बड़ी बाधा है असफलता का डर। लोग सोचते हैं अगर मैं हार गया तो क्या होगा, जैसा कि आपने बताया था, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, लेकिन सच्चाई ये है श्रोताओं कि असफलता सफलता का दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक होती है।
0: बिल्कुल,
1: हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हर हार हमें मजबूत बनाती है और हर संघर्ष हमें बेहतर इंसान बनाती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही है और विषय भी काफी महत्वपूर्ण है आज के इस कार्यक्रम में,
1: बिल्कुल,
0: हमारा कि हमारे युवा साथी कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें।
1: जी हाँ,
0: तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो साथियों बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि कंफर्ट जोन से युवा साथी किस तरह से बाहर निकले और सफलता की नई उड़ान भरे।
1: जी जी।
0: तो श्रोता साथियों, हमने गीत से पहले जाना था कि आखिर कंफर्ट जोन होता क्या है, युवाओं के लिए विषय क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही कंफर्ट जोन हमें कैसे रोकता है, सफलता हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर क्यों मिलती है, ये सारी बातें गीत से पहले रही थी कशिश। यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताते हैं कि सीखने की आदत हमारे अंदर हमें विकसित करनी होगी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जो युवा सीखना बंद कर देता है उनका विकास भी रुक जाता है। श्रोताओं, नई किताबें पढ़िए, नए कौशल सीखिए, नई तकनीक को समझिए, नई भाषा सीखिए, नई जिम्मेदारियां स्वीकार कीजिए। हर नया अनुभव आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करेगा। याद रखिए, सीखना केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, जीवन स्वयं सबसे बड़ा विद्यालय है।
1: बिल्कुल।
0: और कहा भी क्या है कि जो सीखता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता रहता है।
1: जी हाँ जागृति जी, और हम देखते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कुछ नया किया है उन्होंने जोखिम तो उठाए है ही।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि श्रोता साथियों, एक छात्र पहली बार मंच पर बोलता है, एक खिलाड़ी पहली बार बड़े मैदान में उतरता है, एक उद्यमी नया व्यवसाय शुरू करता है, ठीक उसी प्रकार एक कलाकार अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। जागृति जी, हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहकर सफल नहीं हुआ।
0: बिल्कुल।
1: हर उपलब्धि की शुरुआत दोस्तों उस क्षण से होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। देख सकते हैं कि हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या असफलता का भय है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सच ये है कि असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है।
0: जी हाँ।
1: जब बच्चा चलना सीखता है जागृति जी, तो वो कई बार गिरता है। जब किसान खेती करते हैं और देखते हैं कि जब किसान खेती करते हैं तो कई बार असफल होते हैं, क्योंकि हर मौसम एक जैसा नहीं होता साथियों।
0: जी हाँ।
1: जब खिलाड़ी अभ्यास करता है तो हर मैच नहीं जीतता, फिर भी वे प्रयास करना नहीं छोड़ते। देखते हैं कि जीवन में असफलता हमें मजबूत तो बनाती है ही और अनुभव भी देती है, साथ ही सफलता के लिए तैयार भी करती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम अचानक बहुत बड़ा जोखिम उठा लें, छोटे छोटे कदम भी पर्याप्त हैं। श्रोताओं, अगर हम लोगों के सामने बोलने से डरते हैं तो छोटी सभा से शुरुआत करें। अगर नई जिम्मेदारियों से घबराते हैं तो एक छोटा कार्य स्वीकार करें। अगर नया कौशल सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन थोड़ा समय दें, यानी कि धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे बढ़ने लगेगा।
1: जी।
0: बहुत से युवा इसीलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते कशिश, क्योंकि वे दूसरों से तुलना करते रहते हैं। कोई दोस्त उनसे ज्यादा सफल दिखाई देता है, कोई अधिक प्रतिभाशाली लगता है, कोई अधिक लोकप्रिय होता है, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। श्रोता साथियों, जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तब कंफर्ट जोन अपने आप टूटने लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों से नहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ लगाइए।
1: जी हाँ। अब यही अगर डिजिटल युग की बात की जाए तो देखते हैं कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने सुविधाएं तो दी हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार युवाओं को एक डिजिटल कंफर्ट जोन में भी बांध दिया है। घंटों स्क्रीन पर समय बिताने से वास्तविक जीवन के अनुभव कम होते जा रहे हैं हमारे युवा साथियों में। ऐसे में हमारे युवाओं को ये चाहिए कि वे खेलकूद में भाग लें।
0: जी हाँ।
1: सामाजिक गतिविधियों से जुड़े, पुस्तकें पढ़ें और प्रकृति के साथ समय बिताएं।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, यही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। साथ ही स्वयं पर विश्वास रखना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं। हो सकता है दोस्तों कि अभी हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब आप उन चुनौतियों का सामना करेंगे तब आपको अपनी क्षमता का वास्तविक परिचय मिल जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए दोस्तों कि जहां डर समाप्त होता है वहीं विकास शुरू होता है, जहां सुविधा क्षेत्र समाप्त होता है वहीं संभावनाओं का संसार आरंभ होता है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि संघर्ष के बिना नहीं मिलती। बीज को भी वृक्ष बनने के लिए मिट्टी चीरनी पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: नदी को समुद्र तक पहुँचने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। सूरज को भी चमकने के लिए हर सुबह उठना पड़ता है।
1: जी जी।
0: इसी तरह युवाओं को भी अपने सपनों तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं हम आपको यही कहना चाहेंगे कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, नई तकनीक आ रही है, नए अवसर बन रहे हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे समय में जो युवा केवल आराम तलाशते रहेंगे वे पीछे रह जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जो सीखने, बदलने और जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे वही भविष्य का नेतृत्व कर पाएंगे। कशिश
1: जी हाँ।
0: आज का समय साहसी युवाओं का समय है। श्रोताओं, आज का समय नए विचारों का समय है, आज का समय बड़े सपनों का समय है, इसीलिए भविष्य उनका है जो बदलाव को अपनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो याद रखिए श्रोता साथियों, जीवन की सबसे खूबसूरत उपलब्धि हमारे कंफर्ट जोन के बाहर हमारा इंतजार कर रही है। जिस दिन हम डर से ऊपर उठ जाएंगे उसी दिन हमारी वास्तविक यात्रा शुरू हो जाएगी।
1: जी
0: जिस
1: हाँ।
0: दिन हम नई चुनौतियों को स्वीकार कर लेंगे कशिश, उसी दिन हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जिस दिन हम असफलता से डरना छोड़ देंगे श्रोता साथी, उसी दिन सफलता हमारी ओर पड़ना शुरू कर देगी। इसीलिए आज स्वयं से एक वादा कीजिए कि मैं अवसरों से नहीं हारूंगी या नहीं हारूंगा, मैं सीखना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं चुनौतियों का सामना करूंगी और मैं अपने सपनों को आराम की दीवारों में कैद नहीं होने दूंगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जीवन का असली आनंद सुरक्षित किनारों पर खड़े रहने में नहीं बल्कि नई दिशा में आगे बढ़ने से है। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से बस हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आराम की सीमाओं को तोड़ दीजिए, हौसलों की उड़ान को उड़ने दो, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पहचान दीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हुई, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और यहाँ पर गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से कंफर्ट जोन को लेकर कि युवा साथी कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम युवाओं की आवाज में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर हाजिर होते हैं तो हमारे आपसे बातचीत का एक नया विषय रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय लेकर हम हाजिर हैं। साथियों आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जागरूक परिवार सुरक्षित भविष्य को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि माता पिता अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दुख न मिले, कोई परेशानी न आए। लेकिन साथियों जीवन की सच्चाई ये है कि जीवन में कभी न कभी संकट तो जरूर आता है। कभी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव देखा जाता है, तो कभी दोस्तों में गलतफहमी और कभी असफलता का डर। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए श्रोता साथियों पहले मनोरंजन करते हैं, फिर मैं अपनी बातचीत को फिर से जारी रखूंगी।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय आपको बता चुकी हूँ कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे जागरूक परिवार और सुरक्षित भविष्य के बारे में। साथियों, जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले भी बताया था कि हर माता पिता अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रोता साथियों, कभी बच्चों में पढ़ाई का दबाव देखा जाता है, लेकिन देखते हैं कि कई ऐसे पल भी बच्चों के जीवन में आते हैं जब बच्चों को खुद मजबूत बनकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं साथियों कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को संकट से लड़ना सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें इतना बचा रहे हैं कि वो मुश्किलों का सामना करना ही नहीं सीख पा रहे हैं? इन सभी सवालों के उत्तर श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए साथियों, सुनते हैं यह रेडियो नाटक मजबूत बच्चे समझदार परवरिश।
1: अरे, आजकल के बच्चों को देखकर कभी कभी चिंता होने लगती है।
2: नमस्ते सुमन।

0: अरे नेहा नमस्ते, आओ बैठो।
1: क्या सोच रही हो इतनी गहराई से?
0: बस बच्चों के बारे में सोच रही हूँ।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: अरे कल मेरे बेटे को थोड़ा ज्यादा होमवर्क मिला, बस वही देखकर वो परेशान हो गया।
1: अरे ये तो मेरे घर में भी होता है।
0: सच?
1: हाँ, मेरे बेटे भी कई बार छोटी सी परेशानी को देखकर कह देती है मम्मी मुझसे नहीं होगा।
0: यही तो चिंता की बात है नेहा।
1: क्यों?
0: अगर बच्चे छोटी छोटी बातों से घबरा जाएं, तो जीवन के बड़े संकटों का सामना कैसे करेंगे?
1: तुम सही कह रही हो सुमन, लेकिन आजकल के बच्चे पहले जैसे मजबूत नहीं रहे।
0: हाँ नेहा, असल में गलती बच्चों की नहीं, कई बार माता पिता की होती है।
1: हमारी?
0: हाँ।
1: कैसे?
0: हम बच्चों को हर समस्या से बचाने की कोशिश करते हैं।
1: तो इसमें क्या गलत है?
0: गलती यह है नेहा कि जब बच्चे हर समस्या से बचाए जाते हैं, तो वे समस्याओं से लड़ना सीख ही नहीं पाते।
1: तुम्हारी बात सच है, लेकिन हमें डर लगता है कहीं बच्चे परेशान न हो जाएं।
0: देखो नेहा, परेशानी से बचने से ज्यादा परेशानी का सामना करना सिखाना है।
1: मतलब?
0: अरे अगर बच्चा किसी मुश्किल में है, तो तुरंत समाधान हमें नहीं देना है।
1: फिर
0: हमें उससे पूछना है कि तुम्हें क्या लगता है, इसका हल क्या हो सकता है।
1: अच्छा, इसे बच्चा खुद सोचने लगेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन एक बात और है।
0: क्या?
1: आजकल के बच्चे असफलता से बहुत डरते हैं।
0: यह तो सच है।
1: अगर परीक्षा में कम नंबर आ जाए तो भी बच्चे दुखी हो जाते हैं।
0: हाँ नेहा, इसलिए हमें उन्हें सिखाना होगा कि असफलता भी सीखने का मौका है। तुमने देखा होगा कि जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अगर हम उसे गिरने से ही रोक दें, तो वह चलना कभी नहीं सीखेगा।
1: सही कहा तुमने। सुमन, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले बच्चों को धैर्य सिखाना चाहिए।
1: धैर्य क्यों?
0: क्योंकि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता।
1: हाँ, कई बार समय लगता है।
0: दूसरी चीज है आत्मविश्वास।
1: सुमन, अगर बच्चों को खुद पर भरोसा होगा तो वह मुश्किलों से नहीं डरेंगे।
0: बिल्कुल।
1: सुमन, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: कई बार बच्चे अपनी समस्याएं बताने से डरते हैं।
0: क्यों?
1: उन्हें लगता है कि मम्मी पापा डांटेंगे।
0: यही तो समस्या है नेहा।
1: तो हमें क्या करना चाहिए सुमन?
0: हमें बच्चों के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता बनाना चाहिए।
1: वो कैसे?
0: अगर बच्चे खुलकर बात करें, तो उनकी आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है नेहा। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि मम्मी पापा हमेशा उनके साथ हैं। और एक और जरूरी बात नेहा।
1: क्या?
0: बच्चों को हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी होगी।
1: जैसे?
0: अपना कमरा साफ करना, अपना स्कूल बैग तैयार करना, घर के छोटे काम करना। इससे बच्चे जिम्मेदार बनते हैं।
1: सुमन, मुझे लगता है कि बच्चों को समस्या से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम उन्हें मजबूत बनाएंगे तो वे जीवन में आगे बढ़ेंगे।
2: तो दोस्तों, आपने ये सुना दो माताओं की सार्थक बातचीत को। इस नाटक में हमें सिर्फ यही जानने को मिला कि बच्चों को हर परेशानी से बचाने की बजाय उन्हें परेशानी से लड़ना सिखाना चाहिए। जैसा कि हमने सुना साथियों, कि दो माताएं बता रही थी कि बच्चों को हमें धैर्य सिखाना चाहिए, आत्मविश्वास सिखाना चाहिए, समस्या का समाधान सिखाना चाहिए, सकारात्मक सोच के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि श्रोता साथियों, जो बच्चे संकट से लड़ना सीख जाते हैं, वही जीवन में सफल और मजबूत बनते हैं। और यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश है। तो जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, और मैं जैसा कि देख रही हूँ कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सच्चा बचपन से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। कुछ बातें रह गई थी जो आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चों की परवरिश केवल उन्हें पढ़ाना लिखाना या फिर उनकी हर जरूरत को पूरी करना नहीं होता, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाना भी उतना ही जरूरी होता है। श्रोता साथियों, माता पिता का स्वाभाविक प्रेम ये चाहता है कि बच्चे किसी भी परेशानी से बिल्कुल दूर रहे, लेकिन वास्तव में सच्चाई तो ये है कि हर परेशानी से बच्चों को बचाना उन्हें कमजोर बना सकता है। श्रोता साथियों, हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का अवसर होती है। जब हमारे बच्चे ये समझ जाएंगे कि गिरकर भी उठना ही जीवन का असली साहस है, तो वे चुनौतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनका साहस के साथ सामना करेंगे। तो श्रोता साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, इस पर भी श्रोता साथियों आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम सच्चा बचपन में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: બહેનબોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત વાત એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હો અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે ખેતી તકી જુડી જૂની પરંપરાએ કઈ કઈ હે ને અવળેના ટાઈમે એણની હું ઉપયોગીતા હે, તો અણો વિશે માતે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જુડી રહે સોહનજી. તો સબ તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે ને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ और खेती से जुड़ी विशेष जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं. तो सर आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ. कृषि से जुड़ी पुरानी परंपराएं कौन कौन सी थी और उनकी अभी के समय में क्या उपयोगिता है. तो सर सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि हमारी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और पुराने रीति रिवाजों में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी किसानों के लिए उपयोगी हैं.
1: देखिए हमारी जो कृषि पद्धति है वो पारंपरिक ही है पूरी की पूरी. ठीक है, धीरे धीरे धीरे धीरे वैज्ञानिक उन पे प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे उसमें बदलाव करते गए. ज्यादा उत्पादन के उसमें या बीजों का अनुवांशिक गुणों को एक बीज के गुण को दूसरे बीज के गुण में इस तरह से जो है उसमें परिवर्तन वो करते गए और इस तरह से हमारी कृषि पद्धति में धीरे धीरे मशीनीकरण आया. धीरे धीरे तो मशीनीकरण के हिसाब से फिर उस कृषि पद्धति में बदलाव हुआ. तो जैसे जैसे साधन बढ़े या जैसे जैसे ये कहूं कि मशीनीकरण और वैज्ञानिकरण आया, धीरे धीरे कृषि पद्धति में जो बदलाव आए.
0: बिल्कुल.
1: जबकि परंपरागत जो कृषि पद्धति है वो ही वास्तविक कृषि पद्धति है. वो एक साहित्य है और वो धीरे धीरे एक दिन में जैसे कि कृषि है वो नहीं सीखी गई. आप सभी को पता है कि हमारे जो पूर्वज है जंगलों में रहा करते थे.
0: बिल्कुल.
1: और जंगलों में रह के जंगल में जो मिलता था वो खाते रहे. धीरे धीरे फिर भोजन की कमी आई. भोजन की कमी आई तो फिर उन्होंने उसका हल निकालने के लिए इस कृषि को सीखा.
0: बिल्कुल.
1: और बुआई करना चालू किया. कुछ जंगल थोड़ा साफ करके बुआई चालू किया. वहीं अपने घर के पास में ही एक खेत बनाया. फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी. एक खेत से दो खेत बने, दो खेत से पांच खेत बने, फिर गांव बना, फिर शहर बने. तो इस तरह से बढ़ता गया कारोबार.
0: बिल्कुल.
1: तो यही जो है हमारी परंपरागत कृषि पद्धति धीरे धीरे विकसित होती गई और इसके साथ में एक फसल से दो फसल, दो फसल से तीन फसल, तीन फसल हम क्या खा सकते हैं उसी को उगाने लगे.
0: बिल्कुल.
1: और खा के टेस्ट करते हमारे पूर्वज और उससे अगर कोई शरीर को नुकसान नहीं होता और पेट में जो है ऊर्जा मिलती, शरीर में ऊर्जा मिलती, बस वही उगाना शुरू किया और वही हमारी कृषि पद्धति का पार्ट है.
0: बिल्कुल.
1: वो बन गया. इसी तरह पेड़ पौधे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ रहे हैं या जिनके फल हम खा रहे हैं वो हमारी कृषि पद्धति का जो है हिस्सा बन गए और इस तरह से जो हमारी कृषि पद्धति विकसित हुई.
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा. जैसा कि आपने बताया कि हमारी कृषि पद्धति क्या है, किस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी है. यही सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आधुनिक कृषि तकनीकों के इस दौर में पारंपरिक कृषि ज्ञान और परंपराओं को अपनाने से किसानों को क्या लाभ मिल सकता है.
1: देखिए आधुनिक कृषि पद्धति को हम देखते हैं तो वो बहुत खर्चीली हो गई है.
0: बिल्कुल.
1: हर चीज में पैसे का लेन देन है. जबकि हमारी परंपरागत कृषि पद्धति में पैसों का लेन देन कहीं नहीं था.
0: बिल्कुल.
1: एक सामाजिक व्यवस्था थी या पारिवारिक व्यवस्था थी जो पूरी खेती को करते थे या जरूरत पड़ती थी तो दूसरे लोग उसमें मदद करते थे. जब उनको जरूरत होती तब वो उनके खेत पे जाके मदद कर देते और जब इनको जरूरत होती तब इनके खेत पे आके मदद कर देते. या बीज कभी बाजार से नहीं लाना पड़ता था, बीज खुद ही संरक्षित करके रखते थे.
0: जी जी.
1: और जैसे कि आज मशीनरी में हल चलाना है तो ट्रैक्टर भाड़े लाना पड़ेगा. ट्रैक्टर भाड़े लाएंगे तो वो ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल खाएगा.
0: बिल्कुल.
1: है ना, डीजल खाएगा तो वो जो है पोल्यूशन भी फैलाएगा और वातावरण में प्रभाव भी उसका गलत असर भी पड़ेगा.
0: जी जी.
1: चाहे हमारी श्वसन क्रिया में हो, चाहे हमारे शरीर में बीमारियों में हो, तो प्रदूषण तो जो है हमेशा नकारात्मक ही परिणाम देता है मानव शरीर के लिए.
0: बिल्कुल.
1: तो वो धीरे धीरे जो है देसी खाद हमारे यहाँ पे जो गाय भैंस इतनी पर्याप्त मात्रा में किसान रखता था और इतनी जमीन भी उसके पास हुआ करती थी। अब धीरे धीरे धीरे किसानों के पास जमीन कम होने लगी तो किसानों के पास पर्याप्त चराने के लिए जो है खेत नहीं है या बाड़े नहीं है या चारागाह नहीं है, इसलिए किसानों ने धीरे धीरे पशु कम कर दिए। पशु कम कर दिए तो जो देसी खाद जितनी मात्रा में गोबर खाद मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता।
0: बिल्कुल,
1: तो किसान है वो रासायनिक खाद की तरफ गया। रासायनिक खाद की तरफ गया तो रासायनिक खाद है उसने भूमि पे थोड़े दिन तो अच्छा उसने उत्पादन दिया, अब भूमि पर नकारात्मक असर डालने लगा। एक भूमि में जो नमी कायम रहती थी वो नमी गायब कर दी और जो जमीन है या मिट्टी है वो बहुत कठोर हो गई, उसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई।
0: जी जी।
1: अब धीरे धीरे धीरे पानी की जरूरत ज्यादा होने लगी है ना, और खाद की जो जरूरत है दिन प्रतिदिन जो है वो रासायनिक खाद है तो वो तो क्या करेगा, जितना भी आपके मिट्टी में जो तत्व है उसको खींच के एक साथ दे देगा, नया तत्व उसके अंदर मिलाएगा नहीं।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और हमारा जो जैविक तरीका था वो पूरा एक साइकिल चलती थी, पूरी साइकिल कंप्लीट करता था तो वो एक जैसा जो है हमारी मिट्टी रहती थी, एक जैसा उत्पादन रहता था, एक जैसी जमीन रहती थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब वैसा नहीं है, अब हर साल है उसमें परिवर्तन आ रहा है।
0: जी जी।
1: या तो रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है या जो है उसमें हर साल सिंचाई की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है, इससे अलग अलग बीमारियां आ रही है, तो इससे क्या है कि खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है और उत्पादन धीरे धीरे हम देखेंगे
0: कम होता जा रहा है।
1: तो धीरे धीरे धीरे अब किसान परिवार क्या है कि खेती छोड़ता जा रहा है। खेती छोड़ने का मुख्य कारण ही यही है कि उत्पादन कम है, खर्चा ज्यादा है, युवा खेती को इसलिए पसंद नहीं करते, इसलिए युवा दौड़ते हैं और वो नौकरी की चाह में, और नौकरी की चाह में जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका पूरी जवानी है वो नौकरी पाने की चाह में खत्म हो जाती है और आखिर में जाके वो बेरोजगार हो रह जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो न खेती सीख पाता है, न खेती पूरी तरह से कर पाता है, न नौकरी मिल पाती है।
0: जी हाँ सर, आपने सही कहा। यही अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पुराने समय में किसान मौसम और प्राकृतिक संकेतों के आधार पर खेती के निर्णय कैसे लेते थे और क्या यह ज्ञान आज भी उपयोगी है?
1: बिल्कुल, जैसे कि हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो पहले नक्तर हुआ करते थे।
0: बिल्कुल।
1: ये नक्तर आ रहा है, ये नक्तर आ रहा है, उस नक्तर का काफी जो है वो भविष्यवाणियां बहुत ही सही साबित होती थी। जैसे कि आकाती जो आती है हमारे यहाँ पे, तो वहां से जैसे कि हम कहते हैं कि जो खरीफ जो ऋतु है वहां से शुरू हो जाती है और वहां से बुवाई शुरुआत हो जाती है और उस समय लगभग जो है बारिश जो है आना शुरू हो जाती है। जैसे कि कुछ लंबे समय वाली जो फसलें हैं वो आकातीज में लोग लगा दिया करते थे, जैसे कपास है, हल्दी है, इस तरह की जो लंबे समय अवधि वाली जो फसलें हैं उनको उस समय लगा दिया करते थे। जब थोड़ी बहुत पानी की कमी आती थी तो सिंचाई बीच में कर दिया करते थे, बाकी इतने में बारिश आ जाती, वैसे लगभग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पौधा छोटा होता, पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। और जो जैसे कि बहुत सारे हवा चलती है इस तरफ से, पूर्वी चल रही है तो ये इतने दिनों में मानसून आ जाएगा, तो ये काफी परंपरागत है और ये सिद्ध परंपराएं जो है और अभी भी जो पुराने लोग हैं वो उसको मानते हैं, उसके आधार पे खेती भी करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हमारा शास्त्र भी है तो शास्त्र में ये सारा वर्णित है।
0: बिल्कुल,
1: सारी चीजें। तो हमको उस और थोड़ा पुराना जो हमारा ज्ञान है हम उसको कूरे देंगे तो जो ये वैज्ञानिक जो धारणाएं हैं, वैज्ञानिक जो संदेश जो देते रहते समय समय पे, ये भी उसी के आधार पे है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि सूर्य चंद्रमा इनकी जो पोजीशन के आधार पे जो है हमारी परंपरागत पद्धतियां थी और अभी भी जो है उसी के आधार पे ही जो सैटेलाइट है वो वहां से ये सारी चीजें आती है।
0: बिल्कुल सर, यही अब मेरा आपसे सवाल है कि बीज संरक्षण, जैविक खाद और पारंपरिक खेती के तरीकों से किसानों को क्या लाभ मिलते हैं?
1: देखिए, जैविक खाद और देसी बीज, तो सीधा सा हम बात करें तो देसी मतलब हमारा, जैविक मतलब हमको बिना खर्चे का हमारे खुद के संसाधनों से बना हुआ खाद, और हमारे आसपास की जो जंगली जड़ी बूटियां या पत्ते उनसे बना हुआ जो दवाई है वो जैविक दवाई, इन सब का उपयोग करने से नंबर एक बात तो कि पौधों पे उसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है, नंबर दूसरी बात है कि जो जमीन है वो हमारी दूषित नहीं होती है, वो सही रहती है, और जो जमीन है वो सजीव बनती है। सजीव का मतलब होता है कि उसमें छोटे छोटे जीवाणु हैं जो जमीन को उर्वरक बनाने के लिए जमीन के अंदर काम करते हैं, और वो जीवाणु ऐसे रहते हैं जो वातावरण से जो भी तत्व चाहिए वो वातावरण से लेते हैं और जमीन में फिक्स करते हैं और जमीन को उर्वरक बनाते हैं, और वो जमीन को निरंतर सजीव रखने की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। लेकिन अभी अगर हम रासायनिक की बात करें तो वो उस साइकिल को या उस परंपरा को तोड़ देता है, क्योंकि

0: कि उनमें पुनः जो है जो भी जीवाणु है जो साइकिल बनी हुई है वो वापिस से उनका जीवन शुरुआत करते हैं, वो उनकी उम्र पूरी होती है, मरते हैं, अंडे वापिस पुनः बच्चे बनते हैं, फिर वयस्क होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर उन्हीं के बच्चे वापिस होते हैं। ये साइकिल निरंतर है, चलती रहती
1: जी जी।
0: लेकिन अगर हम यही चीज अगर रसायन में जाए तो रसायन में ऐसा संभव नहीं है,
1: बिल्कुल
0: है ना। इसी तरह हम अगर देसी बीज की बात करते हैं तो देसी बीज में क्या है कि परंपरागत जो है वो अनुवांशिक गुण उस बीज में रहते हैं, वो बीज उसी में चलता रहता है, क्योंकि देसी बीज है वो निरंतर आपका बीज बनता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फल बनता है, फल से वापिस बीज निकालते हैं, ठीक है, फिर वापिस वो बीज के रूप में उपयोग आता है, ये निरंतर साइकिल चलती है
1: जी जी।
0: लेकिन अब हम उदाहरण लेवे हाइब्रिड का, तो हाइब्रिड में आपने बुआई करी, ठीक है, लेकिन अगले साल उसकी आप वापिस बुआई नहीं कर सकते
1: जी जी।
0: अगर आपने बुआई कर दी तो आपका जो 50% से ज्यादा जो पौधे हैं वो बिना फल के रह जाएंगे, बिना उसके बांज हो जाएंगे। फिर अगर अगले साल अगर आपने गलती करके फिर उसी को बुआई कर दी तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको खेत को एकदम जो है वो उस तरह से उत्पादन नहीं दे पाएगा
1: जी जी।
0: या एक तरह से कह सकते हैं कि हम हाइब्रिड बीज को दूसरे साल नहीं लगा सकते, जबकि देसी जो बीज है हमारा वो निरंतर जो है वो हम उसको लगा सकते हैं, निरंतर चल सकता है, वो 100 साल तक हम चला सकते हैं, 500 साल तक चला सकते हैं, 1000 साल तक चला सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हाइब्रिड बीज को हम एक फसल से दूसरी फसल तक हम नहीं ले जा सकते। अब अगर दोनों की हम बात करते हैं जैसे कि खर्चे की, तो हाइब्रिड बीज बहुत महंगा आता है, जो देसी बीज है हमारे घर पे बिना पैसे का होता है,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। दोनों के उत्पादन का हम तुलना करते हैं तो हम उसमें भी अगर हमारा परंपरागत बीज है और उसमें भी हम एक तरह से उसको भी हम शुद्ध करें, शुद्धिकरण उस बीज में, शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि शुद्धिकरण में एक जैसे पौधे को हम जब फसल पकती है उस समय हम टेक कर सकते हैं, एक जैसे मान लो हम भुट्टे का एक उदाहरण देते हैं, मक्की का उदाहरण लेते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो एक समय फूल आते हैं उनको हम अलग टेक कर दे और अलग समय फूल आते हैं उनको हम छोड़ दे, है ना, उन पौधों को। अब उसमें से एक समय फूल आ गए, अब उसमें दो भुट्टे वाले और एक भुट्टा वाला वो हम अलग अलग कर दे,
1: बिल्कुल
0: है ना, उसको भी हम टेक कर दे। अब भुट्टे की साइज के आधार पे भी हम उनको अलग अलग टेक कर देवे, तो इस तरह से शुद्धिकरण, तो दो भुट्टे वाली फसल है वो अलग कर दी हमने, एक ही भुट्टा बड़ा वाला है उसको अलग कर दिया, फिर उनको अलग अलग खेत में करके फिर हम उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो इस तरह से आपका हाइब्रिड, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस तरह की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसको 2-3 साल इस प्रक्रिया को आपने अपना लिया और आपके बीज से आपने अलग अलग कर दिए और एक प्योर देसी वैरायटी आपने बना ली, तो आपकी हाइब्रिड से बहुत अच्छा उत्पादन देगी, इसका मैं गारंटी देता हूँ।
1: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों को बता रहे हैं, तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं वो काफी अच्छी है और हमको वापिस से उन्हें सीखना चाहिए और उनकी अच्छाइयां हैं उन्हें हमारी परंपरागत जो कृषि पद्धति के साथ में हमको उन्हें पुनः अपनाना चाहिए। धीरे धीरे उन पद्धतियों को हम अपनाएंगे तो हमारा जो कृषि करने का तरीका है उसमें आप लोग बाग ये महसूस करेंगे कि काफी लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगी परंपरागत जो पद्धति है हमारी।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: માઇન મોનો સિમકે આપણે આપણે વેસમે સોહંજી સર જોડ્યા તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે આયસ ભાઈન બોન આપને કેવું ચંગા કે કૃષિ થકી જુડી જૂની જે પરંપરાએ હે એ કેવલ આપણી સાંસ્કૃતિક વિરાસત જ નથી બલ્કિ આપણે વર્ષોનો અનુભવ પ્રકૃતિની હમસને ટકાઉ ખેતીનું જ્ઞાનનું ભંડાર ભી હે આધુનિક કૃષિએ ઉત્પાદન વધારવાના જે અવસર આલ્યા હે એની સાથે આપણી જે મિટ્ટી હે એને દૂષિત કર્યું હે પાણીને પ્રદૂષિત કરી દીધું હે ને પર્યાવરણ જે હે એને ભી પ્રદૂષિત કરી દીધું હે તે એવા મેં આપણને આ સમજવાની જરૂરત હે કે જૂની જે પરંપરાએ હતી એ આપણે બદલે કેમ મહત્વપૂર્ણ હતી ને અવડીના ટાઈમે આપણને હરતે એને કામે લેવું હે ને આપણી ખેતીને અસલ બનાવીને રાખવાને હાથે હાથે આપણે પર્યાવરણને ભી સુરક્ષિત રાખવું હે તો આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડે પણ સાથે પહેલા સાંભળી લે એક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા.

0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम ये मान लेते हैं अंजलि कि जो समस्या आज दिखाई नहीं दे रही वो कल भी नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य अचानक नहीं आता,
0: बिल्कुल
1: वो हमारे आज के फैसलों से बनता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज न करें।
0: बिल्कुल
1: आज के इस विषय पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज न करें। श्रोताओं, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आने वाली परिस्थितियों को समय रहते समझ लेते हैं अंजलि,
1: बिल्कुल,
0: और तैयारी कर लेते हैं। दूसरे वे जो ये सोच कर आगे बढ़ते हैं कि जब समस्या आएगी तब देख लेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग आने वाले समय को समझने में चूक जाते हैं समय उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि भविष्य की चिंता नहीं तैयारी जरूरी है। अक्सर युवा सोचते हैं कि अभी तो बहुत सारा समय है,
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई बाद में कर लेंगे, कौशल बाद में सीख लेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बाद में कर लेंगे, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे कि एक उदाहरण है जो आप समझिए। बातचीत शुरू होती है बच्चे और शिक्षक के बीच में। बच्चे का नाम था जागृति जी राहुल। राहुल कहता है, यार अभी से भविष्य की चिंता क्यों करें, जो होगा देखा जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक कहते हैं कि बेटा, किसान भी यही सोच ले कि बारिश आएगी तब खेत तैयार करेंगे तो क्या फसल अच्छी होगी। राहुल ने बोला, नहीं सर। शिक्षक कहते हैं कि फिर जीवन की फसल बिना तैयारी के कैसे अच्छी होगी। तो श्रोताओं, यही जीवन का सत्य है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है बल्कि तैयारी जरूरी है। अगर हम तैयारी रखेंगे जागृति जी, तो हमारा भविष्य अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: हमें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। इसलिए भविष्य की पहली चुनौती है लगातार सीखते रहना। जो सीखना नहीं छोड़ते हैं वही भविष्य को जोड़ते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम नहीं है, बल्कि भविष्य को समझते हुए उसके लिए तैयारी करने का नाम भी है।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र आने वाली चुनौतियों को समय रहते पहचान लेता है, वो प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो भविष्य की समस्याओं को अनदेखा करता है उसे बाद में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए श्रोता साथी, यह आवश्यक है कि हम भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज करने के बजाय उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है अंजलि। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में केवल वर्तमान की सुविधाओं में खो जाना बुद्धिमानी नहीं है। यदि हम आने वाले समय की आवश्यकताओं और समस्याओं को नहीं समझेंगे तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। भविष्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो समय रहते तैयारी कर लेते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज हम देखते हैं कि तकनीक से दुनिया बदल रही है। नई तकनीकें, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल और नए रोजगार लगातार सामने आ रहे हैं। जो युवा सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि यदि कोई व्यक्ति आज भी पुराने तरीकों से ही काम करता है और नई तकनीक सीखने से मना कर दे तो क्या वो प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसने अभी की

0: कोई भी तकनीक को नहीं सीखा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कहा जाता है जागृति जी कि लगातार सीखते रहना चाहिए, हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से दिमाग बीमार हो जाता है और हमें दिमाग को बीमार नहीं करना है, उसके लिए लगातार नई नई तकनीक व नया नया सीखते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन। आज हम देख रहे हैं कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और जल संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। यदि आज हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, जल और जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार नहीं अपनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए पर्यावरण संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं है श्रोताओं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का भी आधार है। रोजगार और कौशल विकास भी भविष्य की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण कार्य करने के तरीके बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई पारंपरिक रोजगार समाप्त हो रहे हैं और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हमारे युवा साथियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि नए नए कौशल को सीखना है, तकनीक ज्ञान को प्राप्त करना है, स्वयं को समय के अनुसार ढालने की कोशिश करनी है। जो युवा सीखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे वही भविष्य में सफल हो पाएंगे।
0: जी हाँ जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से पर्यावरण संकट गहरा रहा है, आगे हम जानेंगे मानसिक तनाव और अकेलापन की बढ़ती चीजों को लेकर, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करना है, और जैसा कि गीत से पहले जागृति जी आपने पर्यावरण संकट के बारे में बताया था, और अब यही बात करते हैं मानसिक तनाव और अकेलेपन की जो चीजें लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर। तो श्रोता साथियों, भविष्य की एक गंभीर चुनौती है मानसिक तनाव। हम देखते हैं कि आज बहुत से जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से अकेला महसूस करते हैं, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझते हैं। तुलना करना और हर समय प्रदर्शन की चिंता करना युवाओं को तनाव की ओर ले जाता है। याद रखिए श्रोताओं, हमारी असली पहचान लाइक्स और फॉलोअर्स से नहीं बल्कि हमारे चरित्र कर्म से बनती है। हमेशा हमें दूसरों से नहीं खुद से बेहतर बनने की दौड़ लगानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, आज के जमाने में मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने बताया था कि आज के समय में प्रतिस्पर्धाएं, अपेक्षा, सामाजिक दबाव युवाओं के मन पर प्रभाव डाल रही है। वो चिंता में रहते, तनाव में रहते, अकेलेपन की समस्या उनके साथ बढ़ रही है। इसीलिए श्रोता साथियों, मानसिक रूप से मजबूत बनना, सकारात्मक सोच विकसित करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अंजलि मानसिक रूप से मजबूत होता है वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी भविष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम देखते हैं अंजलि कि आधुनिकता और तकनीकी विकास के बीच यदि मानवता, संवेदनशीलता, ईमानदारी और नैतिकता कमजोर पड़ जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है।
0: जी जी,
1: इसीलिए हमारे युवा साथियों को, श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्यों को भी अपनाना होगा। यही मूल्य समाज को मजबूत और समृद्ध बनाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अभी के समय की सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और कौशल की। इसके लिए श्रोता साथियों, आप एक संवाद सुनिए जो दो लोगों का है। जैसे कि एक लड़का है अमन और उसके सलाहकार। अमन बोलता है कि मेरे पास डिग्री है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। उसका जो सलाहकार है जागृति जी, वो उसे बताता है कि डिग्री के साथ आपने कोई विशेष कौशल सीखा है क्या? अमन कहता है कोई विशेष कौशल नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा। सलाहकार कहता है अरे बेटा, आज दुनिया कितनी बदल गई है।
1: बिल्कुल,
0: प्रमाण पत्र से हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ अलग करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए श्रोता साथियों, कहा गया है कि भविष्य भी उन्हीं का है जो सीखने और बदलने के लिए तैयार है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम सिर्फ प्रमाण पत्र के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि एक राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। यदि युवा जागरूक, शिक्षित, जिम्मेदार और दूरदर्शी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि युवा केवल वर्तमान के सुख और सुविधाओं में खो जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों को अनदेखा कर देंगे तो समाज और राष्ट्र दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए श्रोताओं, युवाओं को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझना होगा। वास्तव में भविष्य कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, भविष्य आज के कार्यों और निर्णयों का परिणाम होता है। हम जैसा आज सोचते हैं वैसा ही कल बनता है। इसीलिए हमें हर क्षेत्र में दूरदर्शिता अपनानी होगी और आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात करें मूल्यों के संकट की, तो श्रोता साथियों, तकनीक और विकास के बीच सबसे बड़ी चुनौती मानव मूल्यों को बचाए रखना भी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हमारे पास धन है लेकिन ईमानदारी नहीं है, ज्ञान है लेकिन संवेदनशीलता नहीं है, शक्ति है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, तो विकास अधूरा है। आज जरूरत है श्रोताओं, अपने भीतर करुणा, सत्य, अनुशासन और सेवा की भावनाओं को बनाए रखने की। सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है जागृति जी, यह आत्मनिर्भरता, जागरूकता और जिम्मेदार का नाम है। जब युवा भविष्य की चुनौती को पहचानता है, उसकी तैयारी करता है और समाज के विकास में योगदान देता है, तभी सच्चे स्वराज का सपना पूरा होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि भविष्य की चुनौतियों को नजरअंदाज करना केवल एक भूल नहीं बल्कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ अन्याय करने जैसा है। इतिहास इस बात का साक्षी अंजलि कि जो समाज समय की आहट को समझते हैं वे विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, जबकि जो चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं उन्हें बाद में कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी, तकनीकी बदलाव, स्वास्थ्य संकट, संसाधनों की कमी और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आवश्यकता इस बात की श्रोताओं की हम इन समस्याओं को केवल चर्चा का विषय न बनाए बल्कि उनके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि भविष्य अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह हर दिन हमारे सामने छोटे छोटे संकेत भेजता है।
1: बिल्कुल,
0: कभी बदलते मौसम के रूप में, तो कभी नई तकनीक के रूप में, तो कभी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के रूप में, और कभी हमारे अपने स्वास्थ्य व संबंधों के रूप में। जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं जागृति जी, वे भविष्य के निर्माता बनते हैं, और जो उन्हें अनदेखा कर देते हैं वे परिस्थितियों के पीछे चलने को मजबूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आज ही निर्णय लीजिए कि आप आने वाली चुनौतियों से डरेंगे नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और समाज से जुड़ेंगे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे। याद रखिए श्रोता साथियों कि भविष्य की चुनौतियां बाधाएं नहीं होती, वे हमारी तैयारी की परीक्षा होती हैं, और जो जग जाता है वही कल इतिहास रचता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि भविष्य उन्हीं का होता है जो आने वाले कल की तैयारी आज से शुरू कर देते हैं। जो समय की चेतावनियों को सुन लेते हैं वही समय के निर्माता बनते हैं। इसलिए आज जागिए, सजग बनिए, तैयारी कीजिए और ऐसा भविष्य गढ़िए जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में बातें बहुत अच्छी रही हमारे श्रोता साथियों से, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सहजन के स्वास्थ्य लाभ को लेकर। हम देखते हैं कशिश के हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे मौजूद हैं जिनमें औषधीय गुणों का खजाना छिपा होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। ऐसा ही एक पौधा है सहजन, जिसे मोरिंगा कहा जाता है।
0: जी हाँ,
1: आज हम जानेंगे सहजन क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक है और इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जा सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें इसी विषय को लेकर आज कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत पहले सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सहजन यानी कि मोरिंगा के स्वास्थ्य लाभ को लेकर।
1: जी जी
0: श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें रही थी कि हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे मौजूद होते हैं जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सहजन भी अंजलि जी उन्हीं औषधीय पौधों में से एक है। अगर बात करें तो दोस्तों सहजन जो है वो एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा होता है जिसकी पत्तियां, फलियां और फूल के साथ साथ बीज भी उपयोगी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अंजलि जी, भारत के कई हिस्सों में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है।
1: जी जी।
0: अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो सहजन का विशेष महत्व होता है। इसे श्रोता साथियों पोषण और औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है।
1: जी हाँ, यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि पोषक तत्वों का खजाना होता है सहजन। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं।
0: जी
1: हम
0: हाँ।
1: देखते हैं कशिश के इसी कारण इसे सुपर फूड कहा जाता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है।
0: जी हाँ।
1: अगर हम सहजन की सब्जी का या किसी भी तरीके से सहजन का सेवन करते हैं तो इसके कई सारे लाभ हमारे शरीर पर हमें देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि कशिश आज के समय में मजबूत इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। सहजन में मौजूद विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर संक्रमणों से लड़ने में अधिक सक्षम बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यहीं अगर बात करें आँखों के स्वास्थ्य की तो देखते हैं कि सहजन आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों सहजन में विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। यह आँखों की रोशनी को बनाए रखने और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, अगर बच्चों और युवाओं के लिए बताया जाए तो उनके जीवन में इसका विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में युवाओं में और बच्चों में सोशल मीडिया का या फिर कहें कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण आंखों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं उन्हें हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सहजन जैसे जो औषधीय पौधे होते हैं वो हमारे बच्चों और युवाओं के लिए ढेर सारे फायदे लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस की उपस्थिति सहजन को हड्डियों के लिए उपयोगी बनाती है।
0: जी हाँ।
1: बढ़ते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। मजबूत हड्डियां स्वस्थ जीवन का आधार होती हैं। आज के समय में कशिश हम देख रहे हैं कि कई लोगों को हड्डियों से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं हो रही है।
0: बिल्कुल अंजलि,
1: ऐसे में ये औषधीय पौधे जो होते हैं वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। आयरन की पर्याप्त मात्रा होने के कारण सहजन श्रोता साथियों शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। खासकर उन लोगों के लिए कशिश जो आयरन की कमी से जूझ रहे हैं, एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। कहना चाहेंगे हाँ। कार्यक्रम के माध्यम से कि मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके लिए सहजन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कुछ अध्ययनों में पाया गया श्रोता साथियों कि सहजन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए मधुमेह रोगियों को किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें हृदय स्वास्थ्य की तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं।
1: जी जी।
0: साथ ही अंजलि जी, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इनका सेवन लाभदायक हमारे लिए हो सकता है। अगर बात करें पाचन तंत्र की तो सहजन में फाइबर भी पाया जाता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल।
0: और फाइबर जो है वो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही कब्ज जैसी जो समस्याएं होती है उनसे भी हमारे श्रोता साथियों को राहत दिलाने में ये सहायक है।
1: जी जी।
0: दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ पाचन पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में अगर आप सहजन का सेवन करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना के रखेगा और जो समस्याएं हमें होती है दस्त और कब्ज की समस्या उनसे भी राहत दिलाएगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है सहजन को लेकर। ये बातें निरंतर आके यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, किस तरीके से सहजन के ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं, इसी के साथ कशिश यह त्वचा और बालों के लिए भी लाभदायक है।
1: बिल्कुल।
0: सहजन में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये त्वचा को पोषण देने और बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सहजन पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसमें कैलोरी अपेक्षाकृत कम होती है। संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम के साथ इसका सेवन वजन प्रबंधन में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: आज के युवा कशिश अक्सर फास्ट फूड पैकेट वाले खाद्य पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन स्वास्थ्य का वास्तविक आधार प्रकृति में ही छिपा है। सहजन जैसे पौधे श्रोता साथियों हमें ये सिखाते हैं कि कई बार हमारे घर और गांव के आसपास मौजूद को बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए औषधीय तौर पर काम आ सकते हैं। यदि युवा पीढ़ी प्राकृतिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपनाए तो भविष्य में कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें कि सहजन का उपयोग हमें कैसे करना है, तो दोस्तों सहजन का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसकी फली की सब्जियां बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कहीं पर तो श्रोता साथियों पत्तियों का साग भी बनाया जाता है। साथ ही हम इसकी पत्तियों का उपयोग सूप के तौर पर भी कर सकते हैं श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ अंजलि जी, हम देखते हैं कि कहीं पर इसका पाउडर भी उपयोग में लिया जाता है। साथ ही श्रोता साथियों, सहजन के पत्तों से हम हर्बल पेय भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और दाल में भी सहजन की फली का इस्तेमाल किया जाता है अंजलि जी। लेकिन यहाँ पर हम हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज का ज्यादा सेवन दोस्तों नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप सहजन का इस्तेमाल भी श्रोता साथियों उचित मात्रा में ही करें।
0: बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम किसी भी पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें सीमित मात्रा में करना है, और अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे शरीर में उसको खाने से किसी प्रकार का कोई अलग रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। क्योंकि कशिश कुछ औषधीय पौधे ऐसे होते हैं जो कशिश सभी को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सी बार कुछ चीजों का विपरीत असर भी हमें लोगों पर देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: यही गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी बीमारी की स्थिति में हमें डॉक्टर से आवश्यक परामर्श लेना होगा।
1: बिल्कुल।
0: और संतुलित मात्रा में ही सेवन करना है। श्रोता साथियों, सहजन केवल एक पेड़ नहीं बल्कि पोषण और स्वास्थ्य का अनमोल उपहार है। इसकी पत्तियों से लेकर फलियों तक हर भाग में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता छिपी है।
1: बिल्कुल।
0: कशिश जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने भोजन में स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं, तब हम न केवल अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जब बाजार में तरह तरह के सप्लीमेंट्स और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े जो पेय पदार्थ उपलब्ध है साथियों,
0: बिल्कुल
1: ऐसे में हमारे पास जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हैं उनका सेवन करना हमें नहीं भूलना है।
0: बिल्कुल।
1: और सहजन अंजलि जी ऐसा ही एक पौधा है जो हमें सिखाता है कि अच्छी सेहत का रास्ता अक्सर हमारे घर और खेत से होकर ही गुजरता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही कि सहजन क्या है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
1: बिल्कुल।
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।